हम आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के श्रावण माह की 9वीं तिथि। तदनुसार 31 जुलाई सन 2026 ईस्वी प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: आख्यानक अनुसार एक बेर विश्वामित्र आ ब्रह्मा में प्रतिद्वंद्विता भेलैन। सृष्टिकर्ता ब्रह्माक पैघत्व के विश्वामित्र स्वीकार नहीं कैलन आ अपर सृष्टि रचना करबाक निश्चय कैलन। एहि लेल ओ सूर्यक आराधना आरंभ कैलन, दीर्घकालीन तप आरंभ कैलन, अंततः सूर्य प्रसन्न भेलखिन। सूर्य से सृष्टि रचना हेतु अपेक्षित ऊर्जा प्राप्त करबा में विश्वामित्र सफल भेला आ अपर सृष्टिक निर्माण करय लेल उद्यत भेला। दक्षिणाकाश में अपर सप्तर्षि, अपर ध्रुव आदिक निर्माण सेहो कैलन। देवता लोकन देखलन जे समानांतर सृष्टिक रचना भेने सब व्यवस्था गड़बड़ा जात। ओ लोकन कोनहुना विश्वामित्र के अपर सृष्टि रचना के विचार त्याग लेल राजी कैलन। अंततः विश्वामित्र अनुकूल भेलखिन आ समानांतर सृष्टि रचना के विचार त्याग देलन। एहि पौराणिक आख्यानक प्रासंगिकता एहि लेल अछि जे अहु युग में वैज्ञानिक लोकनि प्रकृति आ ओकर व्यापार पर नियंत्रण करक लेल प्रयत्नशील छथि। सृष्टिक स्थापित क्रियाकलाप में आधुनिक मानव इच्छानुसार प्रयत्न करय चाहैत छै। संकर अन्न उपजायब, पृथ्वी से इतर ग्रह में आवागमन करब आ ओहिठाम आवासक प्रयास करब, मनोवांछित संतानोत्पादन करब आदि विविध प्रयास सृष्टिक स्थापित कार्यकलापक

0: प्रतिलोमे प्रस्तुत करब थिक आर किछु नहि। विश्वामित्रक अपर सृष्टि रचनाक प्रयासक देवता लोकनि किएक विरोध केलखिन, ई प्रश्न विचारणीय। ई प्रयास अप्राकृतिक आ नियम विरुद्ध छल, ततबे नहि एहिसँ लाभक अपेक्षा हानिये हेबाक अधिक सम्भावना छलैक। प्रकृति विरुद्ध आचरणके प्रकृति सहि नहि सकै छै, एहिसँ कल्याणक स्थान पर अकल्याणे होइ छै। देवता लोकनि संभावित अकल्याणे के ध्यान में राखैत विश्वामित्र के अपर सृष्टि रचना नहीं कर देलखिन। आधुनिक मानव जे प्रकृति विरुद्ध आचरण कर रहल अछि तजन्य हानि तो क्रमानुसार सोझा आबिये रहल छै। संकर फसिल पर रोग आ कीटादिक जतेक प्रकोप देखल जाय छै ततेक सामान्य फसिल पर नहि। ओहि रोग व्याधि आ कीटादिक आक्रमणक प्रतिरोध करय लेल जाहि कीटनाशी सभक प्रयोग कयल जा रहल अछि ओहिसँ ने केवल पारिस्थितिक तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ै छै अपितु ओहि अन्न सभक सेवनसँ मनुष्यक जीवनी शक्तिक ह्रास सेहो दिनानुदिन भऽ रहल अछि। औद्योगिकरणक कुपरिणाम जल वायु आ मृदा प्रदूषणक रूपमे सोझा आयल अछि, जाहि कारण मानव नाना प्रकारक रोग व्याधिसँ पीड़ित भऽ रहल अछि। ध्वनि प्रदूषणक कारण श्रवणेन्द्रियक शिथिलता आ मानसिक व्याधिक दुष्परिणाम प्रकट भऽ रहल अछि। अप्राकृतिक जीवन शैली मनुष्यक जीवनी शक्तिकेँ क्षीण कऽ रहल अछि। एताबता ई तऽ निश्चित अछि जे कल्याणक इच्छुक मनुष्यकेँ प्रकृतिक वशीभूत भऽ कऽ चलक चाही, प्रकृतिसँ अरारि नहि ठानक चाही। प्रकृतिक अनुकूल आचरणसँ मानव जातिकेँ दीर्घायुता प्राप्त भऽ सकै छै, प्रतिकूलताके स्थितिमे विनाश अवश्यम्भावी अछि।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में है।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है ऊसर खेत का सुधार। जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।

किसान भाई लोकनि आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। खेतक माटि हमर सभक अनमोल धरोहर अछि। एकर उर्वरा शक्ति के बना कऽ राखब बड्ड बेसी आवश्यक अछि। हमर सभक अनर्गल क्रियाकलाप आ अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाई फफूंदनाशक दवाई सभक व्यवहार के कारण मृदा के स्वास्थ्य खराब भ रहल अछि। संगे एकर प्रभाव सँ फसल के गुणवत्ता सेहो खराब भ रहल अछि। आइ कृषि चर्चा में हम सब उसर खेत के सुधार कोना करी एहि संबंध में विस्तार सँ गप करब। किसान भाई लोकनि उसर खेत व भूमि के सुधार के लेल सबसँ पहिल काज अपन खेत के माटिक जांच करा ली। ओकर बाद चारू कात सँ उचगर आ मजबूत आयर बना देबाक चाही। संगे किसान भाई लोकनि अपने ओहि खेत मे जिप्सम के उचित मात्रा के छिड़काव करब उचित अछि। हरियर खाद वाला फसिल जेना ढैचा अपने लगा सकै छी। खेत के तैयारी आ सुधार के चरण के संबंध में जँ गप करी तँ सबसँ पहिल गप उचित समय आ शीघ्रता सँ खेत के माटिक नमूना लो प्रयोगशाला में जांच के लेल पठा देबाक चाही। एहि सँ किसान भाई लोकनि अपने के खेत के पीएच मान आ जिप्सम के कतेक मात्रा के आवश्यक

0: तथा एहि संबंध में अपने के जानकारी भेट सकैत अछि। खेत के आयर के निर्माण आप बराबर करब। खेत के छोट छोट खंड में बाँट कर मजबूत आयर बना देवाक चाही। एकर बाद खेत में पाटा चला कर खेत के बराबर क देवाक चाही, जाहि सँ खेत में एक समान रूप सँ पानि लागल रह सके। जिप्सम के व्यवहार खेत के माटि के जांच के बाद एक समान रूप से जिप्सम के छीट कर नीक जका माटि में मिला देवाक चाही। जल भराव आ निकासी खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर पानि भर कर ई पानि के लगभग 10 से 15 दिन धरि खेत में लागल रहब आवश्यक अछि। ऐसा हानिकारक लवण सब पानि में घुल जाइत अछि। एकर बाद खराब गंदा पानि के खेत से बाहर क देवाक चाही। हरियर खाद ढैंचा के रोपनी कऽ दी। जखन फसिल 40 से 45 दिनक भऽ जाए तऽ खेत के नीक जका जोति कऽ ओकरा माटि में मिला देबाक चाही। एहि काज सँ अपने के खेत के माटि में उर्वरा शक्ति के बेस वृद्धि होइत अछि। फसिल के चयन आ उर्वरक के प्रबंधन के संबंध में जो गप करी, लवण सहनशील प्रभेद किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान में राखल जाए जे उपचारित उसर खेत में सबसे पहिने सामान्य फसिल सभक तुलना में उसर खेत सब के लेल बनल धानक प्रभेद जना CSR 36, CSR 43 आ गहूम के KRL प्रभेद सब के लगेवाक चाही। उर्वरक के मात्रा उसर खेत में नाइट्रोजन आ जिंक के कमी होइत अछि, ते सामान्य मात्रा सँ 15-20% नाइट्रोजन वा यूरिया आ जिंक सल्फेट के व्यवहार करब उचित अछि। अम्लीय आ क्षारीय माटि मूल रूप से कोसी क्षेत्र आ पूर्णिया जिला में भेटैत अछि। एहि तरहक माटि के रासायनिक प्रतिक्रिया में पीएच मान 7 से कम होइत अछि। किसान भाई लोकनि अम्लीय आ क्षारीय माटि मूल रूप से कोसी क्षेत्र आ पूर्णिया जिला सब में भेटैत अछि। एहि तरहक माटि के रासायनिक प्रतिक्रिया में पीएच मान 7 से कम होइत अछि, मुदा एकर उपयोग के ध्यान में रखैत 6.5 पीएच मान वाला माटि में सुधार करबाक आवश्यकता अछि। अम्लीय व क्षारीय माटि में चून के व्यवहार को सुधार कैल जा सकैत अछि। चून के मात्रा के निर्धारण अपन खेत के माटिक जांचक उपरांत करक चाही, किएक सब तरहक माटि में अम्लीयता आ क्षारीयता एक रंग के नहीं होइत अछि। किसान भाई लोकनि एहि संग आब आजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न हुआ पर अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान

0: में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ॉन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: आशय के सूजन के प्रमुख कारण है गर्भावस्था या पुरैन यानी प्लेसेंटा के टुकड़ों का रह जाना, या पुरैन के पॉलिप या गर्भाशय के पॉलिप का हो जाना, या गर्भाशय में पस, खून, पानी का जम जाना, या ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड या कैंसर का होना। फाइब्रॉइड उन ट्यूमर को कहते हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है। गर्भावस्था को छोड़कर गर्भाशय के सूजन का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसमें गर्भाशय में मांस और फाइब्रस टिश्यू दोनों बढ़ जाता है और ये गर्भाशय के मांस में ही होता है। आमतौर से 5 से 30 की संख्या में पाए जाते हैं और एक फाइब्रॉइड यानी मायोमा को छोटे आकार से नारंगी के आकार होने में करीब 3 साल का वक्त लग जाता है। यह 35 से 45 साल की महिलाओं में अक्सर पाया जाता है और वैसी महिलाएं जो बांझ हों या हपशियों में यह ज़्यादा प्रमुख है। उन महिलाओं में जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि अंडेदानी की गड़बड़ी से होता है, उनमें भी फाइब्रॉइड ज़्यादा होते हैं। मायोमा गर्भाशय के 3 जगहों पर होते हैं। एक तो गर्भाशय की ऊपरी सतह पर,

0: एक उसके मांस में और तीसरा अंदरूनी सतह पर जो कि पॉलिप का आकार ले लेते हैं। इसमें इसके लक्षण हैं मासिक की गड़बड़ी जो कि सबसे प्रमुख है, जिसमें मासिक ज़्यादा भारी और ज़्यादा खून का गिरना होता है जिससे महिलाओं में खून की कमी हो जाती है और माहवारी के दौरान दर्द का अनुभव भी होता है। और अगर फाइब्रॉइड की सतह पर इन्फेक्शन हो जाए तो वैसे स्थिति में गंदे पानी का बचदानी से गिरने का अनुभव होता है। फाइब्रॉइड के दबाव से कब्जियत भी हो जाती है क्योंकि आसपास की आंतें इसमें दब जाती हैं। और इसके अलावा पेशाब की थाली पर दबाव पड़ने से पेशाब में जलन, दुखन, रुक रुक कर होना और कभी कभी बिल्कुल भी बंद हो जाता है। पैरों की सूजन भी हो जाती है और अगर रक्तपातों के दबाव हो जाएं तो इससे पैरों में दर्द भी होता है। फाइब्रॉइड बांझ होने का भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि वो गर्भाशय और उसके आसपास अंडेदानी के आकार को बिल्कुल बिगाड़ देता है, जिससे अंडे सही रास्ते से गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते और अगर पहुंच भी गए तो फाइब्रॉइड उन्हें गर्भाशय की सतह पर जमने नहीं देता है। और फाइब्रॉइड अबॉर्शन का भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा डिलीवरी में भी परेशानी होती है क्योंकि गर्भाशय के आकार बदल जाने से गर्भाशय के काम में भी बदलाव आता है। बड़े फाइब्रॉइड तो पेट पर झलकते हैं लेकिन पेड़ों के रास्ते देखने से गर्भाशय अपनी आकार से बड़ी हो जाती है और काफ़ी कड़ी मालूम होती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भाशय की सूजन में जो फाइब्रॉइड है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाता है। छोटे फाइब्रॉइड अगर माहवारी में परेशानी ना करें तो उनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मासिक में परेशानी हो तो डानाजोल की टैबलेट या नॉरएथिस्टेरोन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इनके अलावा खून की कमी की भी पूरी की जाती है। कुछ फाइब्रॉइड जो अंदरूनी सतह पर होते हैं और जो पॉलिप का आकार ले लेते हैं उन्हें निकाला जाता है, जिसे पॉलिपेक्टमी कहते हैं। और 40 से कम वर्ष की महिलाएं या वैसी महिलाएं जिनकी फैमिली अभी पूरी नहीं हुई है, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए तो उस फाइब्रॉइड को पेट के ज़रिए निकाला जाता है, जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं। और 40 से ज़्यादा वर्ष की औरतें या वैसी औरतें जिनके मासिक बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं, उनमें अगर फाइब्रॉइड हो जाए तो उसमें गर्भाशय और अंडेदानी दोनों को या तो पेट के ज़रिए या लैप्रोस्कोप के ज़रिए निकाल दिया जाता है। इसके अलावा रोगी को किसी भी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देश का

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अगला भजन भी हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है हरिहरन का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। मुख्य स्वर है सुरेश वाडकर का।
1: एपिसोड नंबर 45, 4-5।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगीं।

रामचरितमानस गान। अभी आप सुन रहे थे प्रसारणा आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

शास्त्रीय संगीत का समय होता है दिन के 11 बजे। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे

11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 12 बजे आप आनंद लेंगे फिल्म संगीतकार।

बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 से। देशभक्ति गीत का समय होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 1:15 पर।

0: रोजगार सूचना आप सुनते हैं 2:10 से। 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। संतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे तरुणा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुणा कुसुम संध्या 5:00। हफ्तावार जायजा आप सुनेंगे 6:10 से। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं संध्या 6:15 से। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है संध्या 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:00। एक बार फिर से सुन ले, किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15 से। शब्द शिल्प यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। और संसद में चल रहे प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे 10:00। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। राज्यसभया एतत् विधेयकं ह्यः पारितम्। लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः 10 कोटि रूप्यकापर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता। तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् 2 मासाभ्यन्तरे अपराधानां अन्वेषणं भवेत्। अभियोगपत्र प्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत्। पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति। अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितम्। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। लोकसभया ह्यः राज्यसभया तु बुधवासरे एव एतत् अनुमोदितमासीत्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते। अथ राष्ट्रगीतस्य अपमानः च दण्डनीयः अपराधः भविष्यति। एतेषाम् अपराधानां कृते अधिकतमः 3 वर्षीयः कारावासः अर्थदण्डः उत वा उभयमपि विहितं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतमस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगतेषु दशकेषु केन्द्रीय राज्य प्रशासनाभ्यां प्रश्नपत्राणां गोप्यताभङ्गस्य समस्या निरन्तरम् अनुभूयते।

0: अनेन च विद्यार्थिनां भविष्यं संकटापन्नम् अभवत्। सः अवदत् यत् एतत् सर्वं मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षाव्यवस्थायाः परीक्षाव्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन्नुपवेशने पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्धस्थितेः तथा विभिन्नमन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उपवेशनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री घटनाक्रमाणां नियमितानुवीक्षणाय नागरिकानां हितसंरक्षणसम्बद्धानाम् उपायानां शीघ्रकार्यान्वयनाय च एकीकृतसमन्विततन्त्रस्य निर्माणम् आहूतवान्। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्र राजधान्यां सद्य एव जातेषु छात्र विरोध प्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचित चिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं जंतर मंतर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग सम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकैः पदक तालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। पार्लियामेंट हैज पास्ड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के, हम प्रवीण, हमरा सब संगे शिव शंकर जी, अहाँ के नमस्कार करे छी।
1: आपको भी मेरा नमस्कार।
0: आजुक कार्यक्रम में समस्त श्रोतागण के स्वागत है, शिव शंकर जी अपने के स्वागत है। कार्यक्रम के शुभारम्भ सब दिन हम सब करे छी एक टा सुविचार संग। आजुक सुविचार गौतम बुद्ध से लेलू है, वीणा के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से संगीत ही ना निकले।
1: वाह, बहुत अच्छा।
0: जीवन के सार कोनो सो विचार होइत अछि, आत्मसात करो के होइत छे, गुण मंथन करो पड़ै छे ओहि पर, और तखन ओहि में से जे विचारक होइ छथि

0: हुनकर की भाव छनि कह के तकर अर्थ लगैत छै। तात्पर्य ई अछि जे अति सेहो कष्टकर भऽ जाइ छै, अल्प सेहो कष्टकर भऽ जाइ छै, बीच के समय जे होइ छै वह सबसँ उत्तम होइत अछि। तऽ वीणा से उद्धृत केलखिन हैं जे वीणा के संगीत तखने निकलै छै जखन ओ मध्यम में रहै छै। अहाँ ओकर तार के बेसी कस देबै तऽ ओ टूटि जायत, ओहिमे सँ संगीते नहि निकलत। अगर बेसी ढील छोड़ि देबै तऽ ओहिमे सँ संगीत नहि निकलत। तैं ओकरा मध्यमे आनि कऽ राखऽ पड़ै छै, तखने वीणा बजै छै। आओर वीणा यदि बजै छै तऽ संगीत निकलै छै जे हमरा सबके नीको लगैत अछि। आउ ई सुविचार उद्धृत के बाद हमसब चलै छी जे आजुक दिन के इतिहास जे से हमरा सबके की सब कहैत अछि। तऽ सबसँ पहिले जनतव्य दी जे आइ अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस अछि, संगहि संग मुंशी प्रेमचंद के पुण्यतिथि अछि।
1: 1790 में अमेरिका में पहले पेटेंट फाउंटेन पेन पर हस्ताक्षर हुए थे
0: जी,
1: और 1980 में आज ही के दिन वनुअतु देश को फ्रांस और ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आज के दिन 1725 में मालवा की महान शासक न्यायप्रिय और रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था, जो आपने अभी कहा। 1936 में महान हिंदी कथाकार मुंशी प्रेमचंद का निधन आज ही के दिन हुआ था।
0: इछल आजुक दिन के इतिहास। और कार्यक्रम के आगा बढ़ैत हम सब सब दिन सुनै छी एक के बाद एकटा मैथिली गीत। तो आओ सुनै छी ई मैथिली गीत
1: जी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का।
4: देश हो रहा है आयुष्मान।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
4: देश हो

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मैथिली सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। आगे हम श्रोताओं को लिए चलते हैं सामाजिक गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम हालचाल। हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
3: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। सावन मास के पहल दिन शिव मंदिर सब में भक्त के लागल बेसी भीड़। मिथिला के प्रसिद्ध शिव मंदिर कुशेश्वर नाथ मंदिर परिसर में अपार भीड़ पहुंच गेल। भक्तजन के सब जलार्पण कऽ पूजा ध्यान केलनि। हर हर महादेव के उद्घोष संग श्रद्धा भाव सँ विश्व कल्याण हित प्रार्थना केलनि। भक्त सब के

0: खुशी देखते बने छल। शिव मंदिर सब में बाबा भोलेनाथ के पूजा केलन आ आशीर्वाद मंगलन सब भक्तजन। प्राय सब मंदिर में बेसी चहल पहल रहल। मिथिला के मखान आव कनाडा पहुंचल। जी, पहिल बेर समुद्र मार्ग सँ दूटा कंटेनर में 60 टन मखान के निर्यात भेल। मिथिला में मखान के खेती विशेष रूप से भ रहल अछि। आब किसान सब से विश्व स्तर के बाजार के देखैत अपन खेती के पुराने पद्धति के छोड़ नव संसाधन संग नव मखान उपजा रहल छथि, जाहिमे संकर प्रभेद सेहो अछि, जकर दाना पैघ होइत अछि और विश्व पटल पर ओकर मांग बेसी होइत अछि। तैं किसान सब आधुनिक ढंग से मखाना खेती सेहो कऽ रहल छथि। आब अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध भेला सँ हुनका सबके आर्थिक आमदनी बेसी होयत और जे मिथिला के विकास में सहायक होयत। मखाना खेती करय वाला किसान सबके सरकार आर्थिक अनुदान सेहो दैत अछि और चाहैत अछि जे एहन जे खेती अछि जे विश्व पटल पर परेस रहल अछि ओकरा बेसी से बेसी किसान अपना कऽ करैत और बेसी आमद बढ़ाबैत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और डॉक्टर बिंद्रेश्वरी पाठक रिसर्च फाउंडेशन सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली समाज उपयोगी अनुसंधान और समूह के विकास हेतु नव गति देवल लेल एक संग ऐला। बुध दिन परसों दुनू संस्थान आपस में एहि पर एकटा बैठकी केलनि और सहमति बनेलनि जे एहि विषय सब पर हम सब संग संग चलब। विशेष रूप से जे बात भेल ओहि में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक समावेश, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, गौरवण सार्वजनिक नीत और सतत विकास के कार्यक्रम एहि में समाहित कयल गेल। एहि संगे दुनू संस्थान के अधिकारीगण सब ई समझ जलनन जे एहि में हम सब संग संग करब और एहि क्षेत्र के एहि में हम विकास करब। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: एहि कार्य योजना सँ समाज में परिवर्तन होयत और एहि में विश्वविद्यालय के अहम भूमिका सेहो होइत अछि। ओना कही जे कोनो क्षेत्र के विश्वविद्यालय के भूमिका सामाजिक उत्थान में विशेष रूप से बढ़ जाइत अछि, किया तऽ शिक्षा के ओहि क्षेत्र के मुख्य केंद्र विश्वविद्यालय होइत अछि और ओहि स्तर पर यदि छात्र छात्रा में एहि तरहक विकासक भावना जुड़तै और ओ ओहिके बुझतै, ओहि संगे बैठकी हेतै, ओहन कार्यक्रम चलतै, तऽ निश्चित रूप सँ ई सब जे समस्या छै स्वास्थ्य के, स्वच्छता के, ई सब समाज सँ दूर होयत और समाज विकास करत। एहि हेतु 4 जिला के सेहो एहि मे जोड़ल गेल अछि, जाहि मे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देल जायत, संगे संगे कौशल विकास के सेहो योजना चलत। मिथिला क्षेत्र में चीनी मिल के पुनः स्थापना के घोषणा सँ किसान सब आनंदित भऽ गेल छथि, हुनक मोन गदगद भऽ गेल छनि। कुसियार सँ नगद आमद होइत अछि, आब किसान सब कुसियार के खेती पैघ स्तर पर करताह। ज्ञात हो कि जखन मिथिला क्षेत्र में चीनी मिल सब छल, रैयाम, लोहट आदि आदि, तखन किसान सब के मुख्य आर्थिक आमदनी के जरिया सिर्फ कुसियार होइत छल, जकरा बेच कऽ ओ सब नगद आमदनी प्राप्त करै छलाह और घर परिवार संग बाल बच्चा के शिक्षा दीक्षा सबटा ओही पैसा सँ होइत

0: छल सने सने मिल सब विलुप्त होइत चल गेल आ मिथिला के कुशियारक किसान सब उदास भ गेल छल। जिनका पुनः जागरण के हेतु सरकार बात बुझलक सुनलक आ मिथिला क्षेत्र में कुशियारक मिल स्थापना के घोषणा केलक ओकर कार्य भ रहल अछि।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: एक बेर हाल चाल में पुनः स्वागत। सीएम महाविद्यालय दरभंगा में गुरुवार यानी कल बीबीए बीसीए के नव सत्र के छात्र छात्रा सब एक प्रेरणादायक कार्यक्रम केलक। व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य केवल चाकरी नहीं अपितु स्वरोजगार सृजन हेबाक चाही। एहि विषय पर बैठकी कऽ छात्र छात्रा सब नव जेनरेशन के ई कहब चाहलखिन जे केवल सरकारी चाकरी भ जाए से लक्ष्य नहीं हेबाक चाही। लक्ष्य ई हेबाक चाही जे स्वरोजगार करी और सरकारी चाकरी सब बेसी काज कऽ बेसी रोज के लोग के रोजगार दी, ओ बेसी नीक होइत अछि। दरभंगा हड़ताल पर गेला सफाई कर्मचारी सब, एक दिन में लागल कचरा के ढेर, जही तही पचरल कचरा, ने बाट साफ भेल आ ने कचरा उठल। अपन तीन सूत्री मांग के लऽ कऽ ओ सब रुसल छथि। दरभंगा संग मिथिला क्षेत्र में खेल सुविधा आ ओकर विकास पर काल्हि राज्यसभा में प्रश्न उठेलनि सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हमारा कार्यक्रम हालचाल अभी आप सुन रहे थे। हालचाल को लेकर उपस्थित थे प्रवीण कुमार झा। आइए अब कुछ मौसम संबंधी जानकारी हम ले लें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के द्वारा उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। 30 और 31 जुलाई यानी आज के आसपास जिलों के अंतर्गत बिहार में गोपालगंज, सिवान एवं पश्चिम चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 तथा न्यूनतम तापमान 24 से 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस अवधि में सुबह से सापेक्ष आर्द्रता लगभग 80 से 85 तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 40 से 45 डिग्री रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुक्त पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार की चलने की संभावना है।
1: एखन मौसम पूर्वानुमान सुने छलहुँ श्रोतागण। ई पूर्वानुमान 29 जुलाई से लक और 2 अगस्त तक के बीच के छल जे आयल छल। आप कार्यक्रम के आगा बढ़त किस गपशप को ली। मानव समाज और साहित्य, आ साहित्य में समाज के झलक, एहिमे अनन्य

0: संबंध है, होइत अछि, होइत रहत। कोनो समाज के जे हम सब देखै छी इतिहास में तो सनै सनै विकासक जे क्रम चलल ओहि में शिक्षा और साहित्य के अहम भूमिका छै, से सब मानै छै। जत्ते शिक्षित समाज होयत, जत्तेक ज्ञान पसरत, उतेक अंधकार दूर होयत।
1: शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है प्रवीण जी, जिसके माध्यम से हम समाज में जो भी बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, उसको दूर कर सकते हैं।
0: सच कहे छी हां,
1: शिक्षा के अलग से ही हम सबको जगा सकते हैं, जिनके माध्यम से वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं।
0: सत्य कहे छी
1: जी,
0: एकदम अहुना कहल गेल छे जे साहित्य कोनो समाज के आईना होइत अछि।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यानी जे समाज में रह कर जे रचना करैत अछि और जेहन रचना करैत अछि, ओ समाज के एकटा आईना के तरह, यानी जेना कोनो आईना झूठ नहीं कहे छे, यानी ओकरा आगा अहाँ यदि ठाड़ होए तो ओ ओहिना प्रतिबिंब अहाँ के देखायत जे ओकरा सामने में अहाँ रखबे। तहिना साहित्य ओहिना बजैत अछि, ओहिना सुनल जाइत अछि, ओना ही पढ़ल जाइत अछि, आ ओहिना लोक ओकरा गूढ़ अध्ययन करैत अछि ओहि पर कि ओकर साहित्य ओकर समाज के जुड़ल घटना के एकटा लिखित प्रमाण होइत अछि।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आइसँ नहि, आदिकाल से आबि रहल अछि साहित्य और समाज में। पहले कॉलम में संबंध होइत अछि, जेने साहित्य ओने समाज, तै साहित्य जते गतिशील प्रगतिशील होइत छै समाज उतेक उत्थान करैत अछि।
1: सही कहा आपने।
0: सवाल ई उठै छै जे आजुक दिन एहि पर चर्चा किया, तऽ आइ पहले कॉलम है जे ओहि पुण्यात्मा के आइ हम सब
1: जी जी
0: प्रेमचंद के आइ
1: जन्मदिन मना रहे हैं, क्षमा करें, हाँ, उनकी हाँ, पुण्यतिथि
0: पुण्यतिथि छै आइ। और जमीन से जुड़ल, समाज से जुड़ल ओ वंचित वर्ग के जे कष्ट जे मर्म छै, तकरा ओ कतेक सहजता से आप शब्द पिरौने छथि, ओ साहित्य अमर अछि हमरा सबके लेल, प्रेरणादायक अछि। कोनो युग आयत लेकिन प्रेमचंद के साहित्य के हम दूर नहीं कह सकै छी, ओहिसँ दूर नहीं भूल सकै,
1: उनको नहीं भुला सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में।
0: तो साहित्य के यदि कहलो है आईना, तो हुनकर साहित्य पढ़ू, ओ दर्द ओ मर्म सब चीज हुनका साहित्य में भेट जायत। और कतो ने कतो लागत अहाँ के जे कि सत्य घटना पर आधारित कथानक अछि।
1: इनका सबसे प्रमुख है गोदान,
0: हम एकटा के की चर्चा करू से
1: जी जी, मैं प्रमुख माना गया
0: हम अइमे मात्र हुनका एकटा उदाहरण के लिए नाम ले लूं, अनेको
1: जी
0: कतेक नाम लियो, अनेको साहित्यकार एहन भेला है जे कतो न ते कतो समाजे से निकलल छला है ना।
1: बिल्कुल,
0: तै हुनकर साहित्य में जो समाजक छवि हमरा नै भेटत तो फिर वो साहित्य की भेले, या कोनो साहित्य जे कोनो परिवेश में लिखाइत अछि, ओ परिवेश के ओ समाज के वर्णन होए, या कोनो कुप्रथा पर चोट होए, या कोनो कुरीत पर चोट होए, या कोनो विकास पर चोट होए, जे शब्द के माध्यम से साहित्यकार अनले अछि, साहित्य में परिवर्तन छै, ओकरा यदि हम पढ़े छी आ ओहिसँ अनुभव लै छी, तऽ जीवन में बहुत किछु आगा बढ़ के हमरा एकटा ऊर्जा भेटैत अछि, सीढ़ी भेटैत अछि, बाट भेटैत अछि, हम ओहिमे आगाँ बढ़ै छी। तै साहित्य सृजन जे छै से कालजयी छै, कालजयी रहत। और सृजनकर्ता जे साहित्यकार छथि, कथाकार छथि, संगीतकार छथि, गीतकार छथि, ओ एकेटा भावसँ जीवै छथि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी समाजक कल्याण हेतै तखने राज्य और राष्ट्र आगा बढ़ते, यदि समाजे के कल्याण नहीं हेतै तो राष्ट्र राज्य कोना आगा बढ़त। और यदि समाज में 10 के कल्याण भ जेतै, बहुत आगा बढ़ गेल, 10 भाई पाछा पाछा आबि रहल अछि, ओहिमे सँ 2-4 भाई बहुत पाछा भ गेल अछि, तो सामाजिक उत्थान ओकरा नहि कहल जाइ छै। समावेशी भाव समाज में अंतिम वर्ग तक जे जाइ छै, ओ विकास जे होइ छै से समावेशी होइ छै। तै साहित्य चेतना जगवा के काज वेर वेर करैत अछि, साहित्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, या कथा के माध्यम से, या कविता के माध्यम से, लेकिन उद्देश्य मात्र

होइतच जे सामाजिक उत्थान कोना होयत। अस्तु गप फेर करब, एखन सावन के महीना छे आ भोला बाबा के कमरिया सब खूब चले छे, तो हमू सब चली गीतनाथ संग हुनका सके स्वागत करी।

0: गीतनाथ तो गीतनाथ होते अच्छे चाहे कोनो हुआ है
1: जे
0: कहलूँ जो भोला बाबा के गीत सुनब सुनलो फिल्मी गीत तो पुनः हम भोला बाबा के गीत अवश्य सुनब फिल्मी गीत सुनब लेकिन कार्यक्रम के देखत आब कि गप के हम विराम दैत आई शुक्र दिन अच्छे आ सब शुक्र दिन के हम सब सुनै छी गांधी कथा तो आओ सुनी गांधी कथा।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। सन 1929 का वर्ष समाप्त होने और 1930 का वर्ष प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने भारतवर्ष की आजादी का झंडा फहरा दिया और गांधी जी को अपना अगुआ बनाकर पूर्ण स्वाधीनता तथा अंग्रेजी हुकूमत से संबंध विच्छेद की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और नमक कानून उल्लंघन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। लंदन में 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज परिषद की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू सहित 20 से अधिक अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट करने के लिए पत्र लिखा। इरविन और गांधी जी की पहली मुलाकात 17 फरवरी, दूसरी मुलाकात 18 फरवरी और तीसरी मुलाकात 19 फरवरी को ही। 1 मार्च को इरविन और गांधी जी की फिर मुलाकात हुई जो काफी देर तक चली और आपसी वाद विवाद के बाद 5 मार्च की सुबह गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद सरकार ने उसे भंग कर दिया। इस बार गांधी जी को नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से फिर चर्चाएं करनी पड़ी। मामला तय होने के बाद दूसरी गोलमेज परिषद हुई जिसमें कराची के कांग्रेस अधिवेशन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी का चयन किया। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे और 5 दिसंबर तक वहीं रहे। वे दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे सरकारी तथा गैर सरकारी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे लेकिन गोलमेज परिषद असफल रही। परिषद ने एक अल्पसंख्यक समिति नियुक्त की जिसमें 6 अंग्रेज, 13 मुसलमान, 10 हिंदू, 2 मजदूर प्रतिनिधि, 2 सिख, 2 अछूत, 2 भारतीय ईसाई, 2 भारत प्रवासी अंग्रेज, 1 पारसी, 1 एंग्लो इंडियन और 4 महिलाएं रखी गई। महिलाओं को छोड़कर सभी ने पृथक निर्वाचन की मांग की लेकिन गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत में सभी भारतीय भारतीयों को भारतीय की तरह मत देंगे। भारत को 1930-31 में जो आंशिक स्वाधीनता प्राप्त हुई वह गांधी जी, इरविन और ब्रिटिश मजदूर सरकार के प्रयत्न का ही परिणाम थी। लेकिन इरविन जा चुके थे और अक्टूबर 1931 में रैमजे मैकडोनाल्ड की मजदूर सरकार के स्थान पर मैकडोनाल्ड के ही नेतृत्व में अनुदार दल की प्रधानता वाला दूसरा मंत्रिमंडल बन गया था। सर सैमुअल होर को भारत का राज्य सचिव घोषित किया गया। यह नई ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी की भावना पर आघात करने लगी। फलस्वरूप 28 दिसंबर को गांधी जी बंबई पहुंचे और दूसरे ही दिन भेंट करने की इच्छा से वायसराय को टेलीग्राम भेजा। जब वायसराय

लेने को तैयार नहीं हुए तो गांधी जी ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के विषय में सूचित किया। तत्पश्चात 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और सरकार ने सारी कांग्रेसी संस्थाएं बंद करके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में गांधी जी अपने कपड़े स्वयं धोते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे और खूब किताबें पढ़ते थे। जेल में ही गांधी जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के लिए प्रस्तावित नए ब्रिटिश संविधान में न केवल पहले की भांति हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा बल्कि नीची जाति के हिंदुओं के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा। गांधी जी उन लोगों के लिए अलग से मतदाता सूची के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने 11 मार्च 1932 को भारत सचिव सैमुअल होर को एक पत्र में लिखा कि हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। दूसरे ही दिन गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड को लिखा, मैं आपके इस निर्णय का विरोध करता हूं। इसके लिए मैं सोडा और नमक के साथ या खाली पानी के सिवा किसी भी प्रकार का भोजन न लेकर आमरण उपवास की घोषणा करता हूं। 20 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अंतिम बार भोजन किया जिसमें उन्होंने नींबू का रस, शहद और गर्म पानी लिया। करोड़ों भारतवासियों ने प्रार्थनाएं की और 24 घंटे का उपवास रखा। 20 सितंबर को हिंदू नेतागण राजगोपालाचारी, सप्रू, घनश्याम दास बिरला, राजेंद्र प्रसाद आदि बंबई के बिरला भवन में एकत्र हुए। उस समय हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर सोलंकी तथा डॉक्टर अंबेडकर थे। पहले तो गांधी जी हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों के भी विरोधी थे, परंतु बाद में वे सहमत हो गए थे। अंबेडकर ने इसका विरोध किया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने 20 सितंबर के सम्मेलन में एक योजना पेश की जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया।

एखन सुनलहुँ गांधी खता। समय कहैत अछि जे किछु गप्पो सप करी, किछु गीतो नाद सुनी। गांधी कथासँ पहिले हम कहनहो छलहुँ जे शिवके महीना सावन चलि रहल छनि आ भक्त सब एकदम प्रसन्न भऽ कामर लऽ कऽ भागि रहल छथि, तऽ आओ सुनी ई बाबाके गीत जे अहूँके नीक लागत आ हमरो नीक लागि रहल अछि।

0: ई भोला बाबा के उमंग के संग गीत नाद सुनैत आब समय कहि रहल अछि जे एहि अंक सँ हमरा प्रवीण के
1: और शिव शंकर को
0: दिया आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।

0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के
1: आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6।

0: का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर
1: बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है।

0: घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: In order to make it more stringent, more deterrent is being brought in.
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
2: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेब जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी

0: सेना के ठिकानों पर अमेरिकी हमले, जॉर्डन में अमेरिका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Parliament passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill with stricter punishment for paper leaks. Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announce Maritime Defence Alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
2: Initiating the discussion, leader of the opposition Mallikarjun Kharge said that proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निजाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम जाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी जाती तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इयादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा

0: लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निजाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करना लाजिमी हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

0: इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: कौम आज इनकलाबी मुजाहिदे आजादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तल्ख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहिब और 9 आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी उधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने उधम सिंह को गैर मामूली जुरत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
3: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 जिलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर जिलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने जिला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेजी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: जम्मू कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है, ताकि समरोली में लाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर बहाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निसफ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 जिलों में से 11 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी

0: को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीकाकार फराहम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आजादाना जहाजरानी को तहफ़ फराहम करना, तजारत के बैनुल अक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ्फुज़ की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के ज़ाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूदान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बजाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिली। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन खवातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजिशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़े सबूत है। आज़रबाईजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को खवातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मजकूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों के तहफ़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत।

0: मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
4: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान, पिछले विधानसभा चुनाव से 7% कम हुई वोटिंग। गया जी में 6000 करोड़

0: रुपए की लागत से इस्पात कारखाना की होगी स्थापना। प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन इस्पात का होगा उत्पादन। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, बांका, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लाया गया है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: विधेयक में 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि यह परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह कानून परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य की रक्षा करेगा।
3: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
4: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान हुआ है। यह वर्ष 2010 में परिसीमन के बाद बने इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में 41.1% मतदान हुआ था। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। इनमें एनडीए से भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गया जी में एक निजी कंपनी लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में पटना में उद्योग विभाग और कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगा। दरभंगा जिले के सकरी और मधुबनी के रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना खेती के विस्तार को लेकर किसानों में उत्साह

0: देखा जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सकरी और रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में 9000 से अधिक किसानों ने गन्ना खेती से जुड़ने और विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों से कृषि विभाग की डीबीटी आईडी के आधार पर सीसीएस पोर्टल पर गन्ना आईडी के लिए आवेदन करने की अपील की है। विभाग ने बताया है कि गन्ना आईडी बनने के बाद ही किसान विभाग की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का समयबद्ध लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: भारत ने पहली बार समुद्री मार्ग से बिहार का प्रसिद्ध मखाना कनाडा निर्यात किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 7 टन मखाने की 2 कंटेनर खेप मुंद्रा बंदरगाह से कनाडा भेजी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब पूरी तरह कानून से जुड़ा प्रश्न है और राज्य सरकार को इसका संवैधानिक आधार बताना होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 अगस्त तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश की सभी महिला थानों में जल्द ही 2 नई इकाइयों का गठन किया जाएगा। इनमें एक इकाई मानव तस्करी की रोकथाम और दूसरी महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर पटना पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है और बिहार पुलिस इससे निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: ह्यूमन ट्रैफिकिंग का की जो समस्या है वो हमारी अन्य जो पुलिस की समस्याएं हैं उसे कहीं भी कमतर नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या को एक उचित स्थान पुलिस की कार्य प्रणाली में मिलना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाने की प्रक्रिया के लिए पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी को भी कंटेंट हटाने का अधिकार दे दिया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार रेल आईजी और पुलिस मुख्यालय के आईजी कार्मिक को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। अब तक यह अधिकार केवल साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई के डीआईजी के पास था। राज्य के 7 जिलों में जल्दी 50-50 बेड के आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य आयुष समिति केंद्र सरकार के सहयोग से इन अस्पतालों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बेगूसराय, सिवान, कया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

0: दिनांक 31 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: सारण जिले में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग की प्रारंभिक लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ उपकरण के माध्यम से नकल कराने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मद्य निषेध विभाग के एक सिपाही, दो होमगार्ड जवान और एक परीक्षार्थी सहित कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इसी परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने पटना से भी 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस रेडियो में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तकनीकी और होमगार्ड सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पद पर नियुक्ति को लेकर 5 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पटना की ओर से दरभंगा समाहरणालय परिसर में हर घर तिरंगा विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी कौशल कुमार, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार और पीआईबी पटना के उपनिदेशक लौकिक पारख ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेतिया के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच घटना के कुछ घंटों बाद वही बाघ जंगल में मृत पाया गया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। बक्सर जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोपाल टेरा के पास पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर अररिया जिले के फुलकाहा से पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर एक घर से गांजा और 10 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए। मौके से 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बीच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुपौल और अररिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम सघन गश्त और जांच अभियान चला रही है। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र स्थित तिफी गांव में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बांकीपुर क्षेत्र में अब तक का सबसे कम मतदान, सिर्फ 34.31% वोटिंग। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मतदाता उदासीन, प्रत्याशी बेचैन। प्रभात खबर ने लिखा है, सासाराम लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता के पास मिले 0.5 किलो सोना, लग्जरी फ्लैट और महंगी घड़ियां। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मौजूदा नियम रहते पेलेट गन पर रोक नहीं लग सकती। आज अखबार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसद में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, E20 पेट्रोल से कम होगा माइलेज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 34.31% मतदान, पिछले विधानसभा चुनाव से 7% कम हुई वोटिंग। गया जी में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से इस्पात कारखाना की होगी स्थापना। प्रतिवर्ष 1 से 1.5 मिलियन टन इस्पात का होगा उत्पादन। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, बांका, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम

0: सावधानी और स्वच्छता से लोग हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लाया गया है।
4: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव।
7: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में एक

0: कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं। फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब हमारे पटना केंद्र से आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
5: ओ ईमेल करें,
6: हमारा ईमेल पता है
5: ddgeaipatna@redifmail.com या pecaipatna@gmail.com या
6: hoopatna@prasarbharati.gov.in।
5: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना। आपका आइडिया, आपकी आवाज, आकाशवाणी का मंच। आकाशवाणी के साथ कंटेंट को नई पहुंच
6: और विज्ञापन को नई संभावनाएं।
7: आकाशवाणी पटना दरभंगा से पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

بار اقدس سے نہ لوٹا آج تک خالی کوئی در بار اقدس سے مقدس اور افضل

जो सच्चे दिल से है हर दमे दीवाना, शाह-ए-तैबा का जो सच्चे

मिटा सके ता नहीं उसको वो कोशिश ला।

उनका ही सबसे आला है, जो उन्हें की याद में सरशार सुबह शाम रहे। कसम।

नबी के नाम की महफिल में है सलाम दुरूद, रज़ाए हक़ है वो ज़िक्र हबीब सुनता है।

दुनिया में ये उजाला है, वो जिसे का बोझ

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीत मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत है आर डी बर्मन का।

हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन EIR ऐप। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म वापस से, आवाजी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

फर्ज फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पूर्व और पश्चिम से। आवाज मुकेश की है।

आस का पंछी। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ती से। आवाज मोहम्मद रफी की है।

फिल्म जीवन मृत्यु से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाज किशोर कुमार की है।

कर लूं कहीं झलक ही। रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए। इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक बार मुस्कुराते से। आवाज किशोर कुमार की थी। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम से, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत मोहन वीणा, राग देश आलाप विलंबित द्रुत रचना तीन ताल। कलाकार थे विश्व मोहन भट्ट।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाएब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण के विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो

0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, वहां आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहां डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800-440-559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि यह नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cie

0: मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800-440-5599 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि यह नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था।

0: यानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
2: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
3: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
3: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
4: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वरमालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
0: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
4: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई।

0: और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोता भी अब सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनिके दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनिके देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: भोर होते उठि जाऊ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबयवला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत।

0: खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोग खैब की
1: मामा बने जाने मामा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा।

अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों को। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म माँ से। गायक कलाकार हैं उषा उतुफ, गीतकार मनोज मुंतशिर, संगीत दिया है रॉकी शिव ने।

मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म माँ से। गायक कलाकार जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल, संगीत निर्देशन रॉकी सिंह ने किया था। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वेदा से। गायक कलाकार हैं अर्जुन राघव और राघव चैतन्य। गीत और संगीत राघव और अर्जुन के हैं।

श्रेया घोषाल और अमाल मल्लिक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेदा का यह गीत। गीतकार थे कुणाल वर्मा, संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक ने किया था। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वनवास से। गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा, पलक मुच्छल। गीत रचना शहीद कादरी ने की है, संगीत दिया है मिथुन ने।

शहद कादरी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म वनवास से। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म लापता लेडी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। गीतकार प्रशांत पांडे, संगीत निर्देशक राम संपत ने किया है।

इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को लालती का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बहनों, स्वागत है आपका आज के आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम में। और नव विवाहितों के लिए दिल्ली पर दस्तक दे रहे परम प्रिय पर्व मधुश्रावणी की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप जानती हैं बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे मीठी मीठी बातें करते हुए फिल्म संगीत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। तो बहनों, सदा की भांति आज भी हम आपसे बातें करेंगे जिसका विषय होगा महिला सशक्तिकरण और आज का भारत। प्यारी बहनों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सही आकलन इस बात से किया जाता है कि वहां की महिलाओं की स्थिति कैसी है। यदि महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित हैं तो वह राष्ट्र निश्चित रूप से विकास के पथ पर अग्रसर होता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहनों, महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, समाज में समान अवसर प्राप्त कर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। श्रोताओं, सशक्त महिला न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास का आधार बनती हैं। आज के भारत में महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, सेना, राजनीति, खेल, उद्योग, साहित्य, कला और अंतरिक्ष जैसे अनेक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। वे केवल घर की जिम्मेदारियों तक ही सीमित नहीं बल्कि देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। बहनों, सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना तथा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। श्रोता बहनों, महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों को समझती हैं, परिवार को बेहतर दिशा देती हैं तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। बहनों, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की है। अंतरिक्ष, विज्ञान, खेल, प्रशासन, न्यायपालिका, उद्यमिता और रक्षा सेवाओं में उनकी भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। श्रोताओं, अनेक महिला वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सैनिक, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी देश की गौरव बढ़ा रही हैं। उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो बहनों, आगे पुनः हम आपसे बातें करेंगे। आइए अब चलते हैं संगीत की दुनिया में, लेते हैं प्यारा सा फिल्म संगीत का आनंद।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

श्रोता बहनों, अभी आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी संसार। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता रजनी जी से।

नमस्कार बहनों, एक छोटी मुलाकात अंक में आपका स्वागत है। मैं रजनी, आपकी रेडियो सखी। आज हम बात करेंगे महिला स्वास्थ्य में स्वच्छता की भूमिका के विषय। बहनों, महिला स्वास्थ्य किसी भी समाज की समृद्धि और प्रगति की आधारशिला है। एक स्वस्थ नारी ही परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाए रखती है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य में स्वच्छता व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव, रजोनिवृत्ति और दैनिक जीवन के स्वास्थ्य में स्वच्छता की अनदेखी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। तो बहनों, आइए सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करते हैं। जैसे नियमित स्नान, साफ कपड़े, स्वच्छ माहौल, हाथ धोना, ये सभी रोगों से बचाव का सबसे सरल उपाय है। महिलाओं में जीवन भर कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छता के प्रति अधिक सजग होना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान साफ सुथरे सैनिटरी नैपकिन का उपयोग समय समय पर बदलना और इसका सही तरह से निस्तारण करना, ये सभी स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली का हिस्सा है। इससे संक्रमण और पेट दर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म के दौरान कपड़ा उपयोग करती हैं महिलाएं, लेकिन ध्यान रहे, इसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था में स्वच्छता और भी जरूरी हो जाता है। साफ साफ पानी का उपयोग करना, पोषक भोजन, स्वच्छ शौचालय और साफ घर माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों की रक्षा करते हैं। इस समय अस्वच्छता से एनीमिया, इन्फेक्शन और प्रसव जटिलता बढ़ जाती है। बहनों, अब रसोई की बात करें तो इसकी स्वच्छता भी महिला स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई है। मल्टीटास्किंग करने वाली महिलाएं अक्सर खुद के स्वास्थ्य को पीछे रख देती हैं, नजरअंदाज कर बैठती हैं।

जिससे पेट संबंधी समस्याएं, कमजोरी और थकान बढ़ती है। स्वच्छ रसोई, साफ पानी, ढके खाद्य पदार्थ और नियमित साफ सफाई बीमारी से बचाती है। हेल्दी आदतें हमें अपनानी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कचरा प्रबंधन, खुले में शौच की रोकथाम, साफ पीने का पानी, बरसात के मौसम में जल भराव रोकना, ये सब महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। महिला स्वास्थ्य में स्वच्छता एक आदत नहीं बल्कि जीवन शैली है। स्वच्छता अपनाकर महिलाएं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की आयु, ऊर्जा और खुशहाली को बढ़ाती है। आज का समय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि स्वस्थ नारी ही मजबूत समाज की जननी है। धन्यवाद।

श्रोता बहनों, अभी आप सुन रहे थे छोटी मुलाकात आधारित वार्ता रजनी कुमारी से है। विषय था महिला स्वास्थ्य में स्वच्छता की आवश्यकता। प्यारी बहनों, अब हम बातें करेंगे जिसका विषय होगा जल संरक्षण। प्यारी बहनों, जल जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम पानी का उपयोग पीने, खाना पकाने, नहाने, सफाई और खेती जैसे कई कामों में करते हैं। श्रोताओं, आजकल कई जगहों पर पानी की कमी हो रही है। नदियाँ, तालाब और कुएँ सूखते जा रहे हैं। इसका कारण है पानी का गलत और अधिक उपयोग। अगर हम अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे तो भविष्य में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। श्रोताओं, इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। हमें पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे नल को खुला ना छोड़ें, टूटी टंकियों को ठीक करवाएं, वर्षा जल को इकट्ठा करें और ज़रूरत से अधिक पानी ना बहाएं। श्रोताओं, पेड़ पौधे लगाने से भी पानी बचता है, क्योंकि वे मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं। हमें बच्चों को भी पानी की अहमियत समझानी चाहिए। श्रोताओं, सरकार भी जल संरक्षण की कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन असली जिम्मेवारी हमारी है। अगर हम सभी मिलकर पानी बचाएंगे तो अवश्य पानी बचेगा। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना पृथ्वी पर जल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहनों, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के लिए जल आवश्यक है। इसलिए जल का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। बहनों, आज के समय में जल की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का विस्तार और जल का अत्यधिक उपयोग इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के लिए भी स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। बहनों, हमें रोज़मर्रा के जीवन में पानी बचाने की आदत डालनी चाहिए, जैसे नल को खुला नहीं छोड़ना, वर्षा जल संचय करना और पानी का पुनः उपयोग करना। श्रोताओं, खेती में भी आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना और जल बचाने के उपाय को अपनाना बहुत जरूरी है। बहनों, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो श्रोताओं, आगे पुनः हम आपसे बातें करेंगे। आइए फिर सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

श्रोता बहनों, हम आशा करते हैं कि ये गाना आपको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम में अब समय हो चला है हर दिन कुछ खास का। आइए, हर दिन कुछ खास में आज हम सौंदर्य से संबंधित कुछ बातें करते हैं कि अपनी त्वचा को चमकदार कैसे बनाए रखें। प्यारी बहनों, हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा बिना मेकअप के भी साफ, मुलायम और प्राकृतिक रूप से चमकदार दिखे। लेकिन धूल, प्रदूषण, तेज धूप, तनाव और गलत स्किन केयर रूटीन की वजह से चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। अच्छी बात यह है कि हर असरदार उपाय महंगा हो, यह जरूरी नहीं। बहनों, कई बार रसोई में मौजूद साधारण चीज़ें भी त्वचा की देखभाल में कमाल कर सकती हैं। नारियल से होने वाला फेस स्क्रब ऐसा ही एक आसान घरेलू उपाय है जो डेड स्किन हटाने, त्वचा को मॉइस्चराइज रखने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं बहनों, इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका। श्रोता बहनों, नारियल का तेल लंबे समय से स्किन केयर का हिस्सा रहा है। इसमें मौजूद हेल्दी फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को नमी देने में मदद करते हैं। वहीं जब इसे हल्के एक्सप्लोरिएटिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर स्क्रब बनाया जाता है तो यह चेहरे पर जमा गंदगी और डेड स्किन सेल्स को धीरे धीरे हटाने में मदद करता है। तो बहनों, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आप पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। पिन नंबर है 846004। बहनों, हमें आप पत्र भेजते हैं, उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है, तो आप अवश्य पत्र भेजें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अब लालती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारे

0: आज शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेघनगर 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

दोपहर 3 बजे होगी और संध्या काल 5 बजे आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम, फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 5:40 पर। हफ्तावर जायजा आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। साथ ही विद्यापति गीतों का आनंद ले सकेंगे शाम 6:15 पर।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे नन्ना मुन्ना राही। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम सुनवाएंगे 7:00। फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे संध्या काल में 7:52 पर। संसद समीक्षा हम आपको सुनाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:00। साथ ही सुनेंगे मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगरहार रात्रि 8:15 पर।

9:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से शब्द शिल्प आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा, वार्ता प्रेम चंद्र, लिखित बाल साहित्य वार्ताकार शिशिर कुमार कर। रात्रिकाल आप सुनेंगे 10 बजे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम, जो कि हम आप श्रोताओं के दिलों को जोड़ने और एक खूबसूरत मंच का काम करती है, जिसमें भावनाएं, यादें और सुंदर नगमों का अनूठा संगम होता है। लहरों पर तैरते संगीत के सफर में आप सभी का स्वागत है। आपकी फरमाइश इस कार्यक्रम में आप इतने प्यारे प्यारे पत्र हमें भेजते हैं और अपने इतने प्यारे प्यारे नाम, इन नाम के साथ बहुत सारी प्यार आप भेजते हैं, फरमाइश भेजते हैं, और हम कोशिश करते हैं आपकी सारी फरमाइश पूरी करने का, जो आप हमें गीत फरमाइश करते हैं इतने प्यार से। तो क्यों ना हम आपका पहला पत्र लेते हैं। ये हैं, इन्होंने लिखा है, आपको हमारा अभिनंदन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, इन लोग की फरमाइश आई है। यह सुनना चाह रहे हैं फिल्म समझौता का यह गीत, जिसे गाए हैं मोहम्मद रफी और मुकेश ने। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। एक और पत्र है जो है दुबी हा नवेदा गाजीपुर से। आप है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजन राय, शेखपुर कलांग गाजीपुर से, अवधेश राय।

श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। एक और पत्र आया है, ये है नाहरमन टोला से, कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान। इन लोगों ने लिखा है, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, क्यों ना हम इस प्यारे से गीत में आपको शरीक करें। और एक और पत्र कुछ ऐसा ही आया है, इन्होंने भी लिखा है, उद्घोषक जी आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें, मेरे मन का और आपके मन का और हमारे सारे श्रोताओं के मन का गीत। आइए सुनते हैं। आप है कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश भट्ट।

श्रोता, वो अभी आप आनंद ले रहे हैं हमारे केंद्र से फरमाइशी गीतों का। एक और फरमाइशा ये है, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मिलन का यह गीत। इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ से जिला खंडवा ग्राम।

भरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल कुमार धनंजय, शीला धनंजय, गात्री धनंजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। एक और पत्र है, इन्होंने कहा है गाना कोई भी आपकी पसंद का सुना दे, धन्यवाद। आप हैं चांडोर विश्वा तालुका नादुरा जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से, नारायण भावखड़ से, रक्षाताई खड़ से, लालिता संजना खड़ से, गणेश और कार्तिक खड़ से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। एक और ऐसा ही पत्र है हमारे हाथ में, ये हैं झंझारपुर लंगरा चौक से हरे राम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी, रानी कुमारी। इन लोगों ने भी लिखा है उद्घोषक जी आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें, तो क्यों ना हम इतने प्यारे से गीत में आपको शामिल करते हैं और सुनवाते हैं यह गीत।

0: Re sol.
1: अरे बाबा शोर नहीं, सोर सोर सोर।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे फिल्म कोरा कागज के आई मिलन की रात का यह गीत अनुराधा पडवाल और मोहम्मद अजीज को। यह फरमाइश आई थी बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष राज मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक राज, अभिषेक कुमार, अमरेंद्र वंश प्रसाद। एक और पत्र था जो इसी गीत को सुनना चाहा था, यह है कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से ईशा मोहम्मद, ईशा सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब गुप्ता, शाहीन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण, सुमैया फातिमा, सना आफरीन, सादिया नूर, नवासा अरसी बाबू, भाई जगन्नाथ मुखिया और खुशी। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिए अगली फरमाइश से, जो है शिवाजी चौक राजीमगढ़ छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। इन लोगों ने सुनना चाहा फिल्म हमराज का गीत। इस गीत को गाया है मुकेश और लता ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं। एक और पत्र आया है दोस्तों श्रोताओं छत्तीसगढ़ से, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। इन लोगों ने सुनना चाहा है यह गीत। प्रिय महोदय या महोदया, सप्रेम नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। संगीत ही जीवन है जी, बिल्कुल। आप है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से। इन्होंने लिखा है, आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दे, क्यों ना हम इस प्यारे से गीत में आपको शामिल करते हैं। आप है भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जैन कुमार बैरागी। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का यह गीत।

0: आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत निर्देशन एसडी बर्मन ने किया था। ये फरमाइश आई थी नागमजिल मासौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगत इश्र अकरम रूबी वसीम नवासा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा मुजम्मिल बाबू नवासी हुमैरा नाज नवासी सुमैरा नाज नवासी अबिया नाज साजिया साहिन नाज नारिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख नुजहत जहानाज कांति निकेतन से राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र गुप्ता। इन लोग की फरमाइश गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे फरमाइश किया है हम पुणे से पंकज वरोद्रे आर्या प्रियंका बीटी वरोद्रा और चंद्रप्रभा वरोद्रा ने। यह सुनना चाह रहे फिल्म सच्चा झूठा का यह गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। गीत रचना इंदिवर की है। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। एक और पत्र आया है यह है नाहर मंटोला से। इन्होंने लिखा है आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें। आप हैं जाकिर अली कादिर अली हामिद अली जाबिर अली मोहम्मद अरमान मोहम्मद सलमान आदर्श नगर मटोल पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा सौरभ शर्मा। इन लोगों की फरमाइश है आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें तो क्यों ना हम आपको यह प्यारा सा गीत सुनाते हैं और सुनते हैं यह गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

0: स्वतः इसी गीत के साथ अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए विदा। यूं ही आप अपने प्यारे प्यारे पत्र हम तक प्यारे प्यारे गीत पहुंचाते रहिए। आपका प्यार प्यार भरा गीत और इतने स्नेह हम तक आते हैं, तो आप अपने अपना पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460004। यूं ही आप हमारा करते रहते हैं अपने प्यारे प्यारे फरमाइशी गीतों के साथ इंतजार, ऐसे ही करते रहिएगा और फिर मिलेंगे हम अपने अगले शुक्रवार को इसी समय। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से विदा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsavi.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज प्रभावित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली बैठक 3 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों का सम्मान करती है, लेकिन अगर आंदोलन में अपराधी भी शामिल हो जाए तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का

निर्देश पुलिस को दिया था। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मंत्री पद पर बने रहने के उच्चतम न्यायालय के सवाल पर कहा कि यह मामला फिलहाल विचाराधीन है। श्री प्रकाश ने पटना में कहा कि अदालत को सभी जरूरी जवाब जल्द ही जमा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किसी संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि बिहार से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। श्री आलोक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि कम मतदान के बावजूद भाजपा यहां से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगा। राज्य के 7 जिलों में जल्द ही 50-50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य आयुष समिति इन अस्पतालों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। बेगूसराय, सिवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। सुपौल जिले के किशनपुर अंचल के मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव से लोगों के सामने पलायन का खतरा मंडरा रहा है। कटाव से सरकारी नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी ध्वस्त हो गई। किशनपुर के प्रभारी अंचलाधिकारी जियाउल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की चपेट में आकर 15 घर नदी में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: मुजरिम भी शामिल हो जाएं तो ये सख्त सवाल खड़ा करता है। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि खुद सपुर्दगी के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी तफ्तीश और जांच की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पुलिस को दी थी। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश ने वजीर के ओहदे पर बने रहने के हाई कोर्ट के सवाल पर कहा कि ये मामला फिलहाल वजीर गौर है। जनाब प्रकाश ने पटना में कहा कि अदालत को सभी जरूरी जवाब जल्द ही जमा किया जाएगा। वाजे रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत बिहार से पूछा है कि पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश असेंबली या कौंसिल के रुकन बने बगैर 6 महीने से ज्यादा मुद्दत तक वजीर के ओहदा पर किस आईनी बुनियाद पर बने हुए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि बिहार से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। जनाब आलोक ने बांकीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब पर पटना में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में पार्टी को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन आवाम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरोगी ने दावा किया है कि बांकीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की जीत यकीनी है। जनाब सरोगी ने पटना में कहा कि कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी यहां से फतह हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को इंतखाब के नतीजों के बाद मुखालिफिन ईवीएम पर तंज करेंगे। रियासत के 7 अजला में जल्द ही 50-50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल कायम किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत के तावुन से महकमे सेहत के तहत रियासती आयुष कमेटी इन अस्पतालों के निज़ाम की तैयारी में आखिरी शक्ल दे रही है। बेगूसराय, सीवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनने वाले इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी सिस्टम से इलाज की सहूलत मिलेगी। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से वस्त बारिश की दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, अजला में काफ़ी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा के मुताबिक 5 अगस्त तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में वस्त से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। सुपौल जिला के किशनपुर अंचल की मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में वाकई पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव की वजह से लोगों के सामने नकले मकानी का खतरा मंडला रहा है। कटाव से सरकारी नल जल मंसूबा के तहत तामीर की गई पानी की टंकी तबाह हो गई है। किशनपुर के इंचार्ज जोनल ऑफिसर जियाउल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की जद में आकर 15 मकानात नदी में गर्क हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों की मदद के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

श्रोताओं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसओ ने पद निकाला है। कुल पद 395 हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/8/2026। इस पद के लिए आवेदक के न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल रखी गई है और अधिकतम 50 साल। इस पद की विस्तृत

जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाकर देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने कुल 545 पद निकाले हैं LBO का पद लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री होना चाहिए। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9/8/2026 रखी गई है। इस पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर देख सकते हैं।

0: इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR ने कुल 200 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/8/2026। आवेदक की उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। NRF ने कुल 6,777 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/8/2026। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 24 वर्ष। इस पद की विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.nrf.requirement.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के कुल 163 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/8/2026 रखी गई है। इस पद के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आप इसकी विस्तृत जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.inic.in पर जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने

0: विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
3: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
4: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर

0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़े कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से। भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय

0: में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 268,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 800,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर था 1296 किलो हर्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः आप आने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म ताजमहल से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। गीत रचना साहिल लुधियानवी ने की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है रोशन ने।

वो जब याद आए, बहुत याद आए। यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारस मणि से। गीत रचना असाद भोपाली ने किया था और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा के ये सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायक में से एक थे, जिन्हें उनकी मधुर आवाज और हर तरह के गाने की खूबी के लिए जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। कलाकार अमर हुआ करते हैं, वह हमारे यादों में, हमारे गीतों में, हमारे चारों तरफ गीत बनकर, एक सुमधुर संगीत बनकर गूंजते हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 2024 को कोटला सुल्तान सिंह पंजाब अमृतसर भारत में हुआ था। निधन 31 जुलाई 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक और प्यारा सा गीत, जो गाया है सुमन कल्याणपुर के साथ फिल्म राजकुमार में। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया है। आइए सुनते हैं राजकुमार फिल्म का यह गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्ज का यह गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मेरे महबूब से। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने, संगीत निर्देशन नौसाद ने किया है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में यह गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र अभी हमारे स्टूडियो की हरिहरी में दिन के 3 बजे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: जॉब करते हैं।
1: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
0: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, और ये चलते ही रहता है, रेडियो सुनती रहती हूँ।
1: अरे वाह। अच्छा ये बताइए, आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
0: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, या और कुछ लिखती हैं?
0: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें
0: जी
1: जीवन
0: जी
1: में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
0: और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
1: जी
0: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: रहता है।
1: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
0: जी
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: जी
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी जी।
0: सत श्री अकाल, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया
1: जी? पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से।
0: अपना नाम बताइए
1: जी। रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है जी। रितु जी, बताइए क्या करती हैं आप
1: जी? मैं तो हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं
1: जी? शौक तो यही है जी, मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं
1: जी? यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट
0: जी। और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं
1: जी? रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे
0: जी। जी जी, तो बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ।
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैम ग्राम त्रायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ।
0: बताइए रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम घर पर रहकर काम करती हूँ।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। ये बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं?
1: जी हाँ।
0: जी जी जी, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी

0: बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं, और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
1: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए, अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
0: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है, क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है। अभी रुकी हुई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
1: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश
0: जी
1: ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
0: जी
1: बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
0: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है, और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं, और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे, और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की, और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद भी छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
1: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का, ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजवी है, नागपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: जिंदगी में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ, खुद
0: अच्छा
1: का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: जी, मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से, दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है, वो गीत जाएंगे हम मासूम पर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी बताइए, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए हाँ। क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ। मैं
0: शॉल बनाती है जी?
1: हाँ।
0: शॉल की बुनाई करती है जी?
1: हाँ दीदी।
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ।
0: जी जी जी, चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से,
0: जी
1: मध्य
0: प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी।
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर। ट्राइबल एरिया है ये, बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है।
0: जी
1: जी, बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी हुई
1: हाँ
0: हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी आपने
1: बिल्कुल
0: रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त हमारी

0: जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
1: जी,
0: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं
1: जी।
0: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख तो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है
1: जी। यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
0: जी, बिल्कुल
1: तो आपका दिन का बिल्ला है उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
0: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
1: जी
0: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली।
1: जी तो हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने
1: जी। स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना।
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है।
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ।
0: जी मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288 यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच, उन्हीं के स्वर में।

0: कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहां छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: किसी की नहीं।
1: बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे। पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी। फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा।

और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और 1 हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच।

दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी तो

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी।

सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह, कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हां हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूं। सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ा

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं, सांध्यकालीन सभा के आरंभ में हम सुनते हैं युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। तो आइए सुनते हैं युववाणी।

0: श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। आज 31 जुलाई है और युवाणी में हम आज कुछ बातें करेंगे धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और आज 31 जुलाई है, अर्थात आज हम सभी उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम सभी आकाशवाणी परिवार और समस्त साहित्य प्रेमी, समस्त भारतवासी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रोताओं, धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। तो इन तमाम पहलुओं पर आधारित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी और उनकी साहित्यिक कृति पर आधारित एक वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है मुंशी प्रेमचंद और उनकी साहित्यिक बातें। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। बिंदु चौहान वार्ताकार हैं। बिंदु चौहान,
1: भारतीय साहित्य की दुनिया के नक्शे पर उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर बसे साधारण से गांव लमही में 31 जुलाई सन 1880 को एक असाधारण कलम के जादूगर ने जन्म लिया। नाम था धनपत राय। वही धनपत राय जिसे समूचा विश्व साहित्य मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानता है। पिता अजायब लाल श्रीवास्तव और माता आनंदी देवी के घर जन्मे इस बालक की पाठशाला उसके जीवन की विपत्तियां रहीं। किताबों ने उतना नहीं सिखाया जितना जीवन के अनुभवों ने उनकी चेतना को झकझोरा। बेहद सरल कदकाठी, गहरी आंखें, चेहरे पर समाज की परेशानी

अनियों से उपजा दर्द, व्यथित मन से ललाट पर उभरी चिंता की गहरी रेखाएं, तन पर खादी का स्वाभिमानी लिबास और मन में स्वतंत्रता की चाहत और सामंतीय व्यवस्था से गहरी वितृष्णा। इस साधारण से दिखने वाले आदमी के पीछे छिपा था मानवीय आदर्श और सामाजिक चेतना का ऐसा प्रकाश पुंज जिसने दशकों तक अपनी कलम की ताकत से अविस्मरणीय विरासत को रच डाला। प्रेमचंद उर्दू, फारसी और हिंदी के अच्छे जानकार थे। स्कूल में हेडमास्टरी के साथ साथ कई सरकारी नौकरियां भी की। गृहस्थी की गाड़ी खींचने के साथ साथ उन्होंने निरंतर अपने लेखन को जारी रखा। 56 साल की अल्पायु में उनका निधन हुआ, लेकिन अपने जीवन के 56 सालों में प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा विपुल संसार अपने पीछे छोड़ गए कि हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद युग आलोचना के मील का पत्थर बन गया। इन्होंने कुल 15 उपन्यासों, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल साहित्य और तकरीबन 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के नाम से 13 भागों में संकलित हैं। इनके साहित्य के बिना हिंदी साहित्य तो क्या भारतीय साहित्य की पूर्णता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रेमचंद ने पहली पहल उर्दू में लिखना शुरू किया। इनकी पहली रचना असरारे मवाबिद उर्दू में नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुई। सन 1908 में इनकी उर्दू कहानियों का संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद का नाम मुंशी दया नारायण निगम ने दिया था। कथा सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व के कई पहलू थे और प्रत्येक पहलू में उन्होंने एक सुदृढ़ और सशक्त मानक की स्थापना की। वे न केवल एक संवेदनशील लेखक थे बल्कि एक कुशल वक्ता और अग्रगण्य संपादक भी थे। उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका हंस उनकी संपादकीय क्षमता का मिसाल रही। प्रेमचंद ने अपनी कलम से अपने समय के समाज का मार्गदर्शन किया। साहित्य में आदर्श के साथ साथ यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। पराधीन और वैचारिक गुलामी की बेड़ियों से जकड़े भारतवासियों के मन में आजादी और स्वत्व की चेतना की वह चिंगारी जलाई जो महात्मा गांधी के आंदोलनों में मशाल की ज्वाला बनकर धधकी। समकालीन का वैसे तो साधारण अर्थ होता है वर्तमान समय से जुड़ा हुआ। हम जब समकालीन साहित्य और मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा करते हैं तो हमारा सरोकार दो बिंदुओं से जुड़ता है। पहला, जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय का युगबोध अथवा उनका समकालीन दौर कैसा था, और दूसरी बात, आज जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तब उसमें यह खोजने की कोशिश करें कि जिस तनाव और वैचारिक संकट से हम और आप आज जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रेमचंद का साहित्य कहाँ खड़ा है। वेब सीरीज और ओटीटी के युग में हम क्यों प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ें और गुनें या अपने स्कूली पाठ्यक्रम में उसे शामिल करें। है ना यह दिलचस्प सवाल? फिर जरा ठहरिए, थोड़ा रुककर सोचेंगे तो यह एहसास होगा कि सीधी सरल कथा, मामूली से किरदारों की भाषा, आचरण, आदर्श, त्याग, प्रेम, मानवीय दुर्बलताओं जैसे लालच, घमंड, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना में आज के लघु मानव के संकट के कई समाधान छिपे हुए हैं। पाठक केंद्रित साहित्य चिंतन समकालीन साहित्य का अभिलक्षण है। तो चलिए एक सुधी पाठक बनकर प्रेमचंद की तमाम कहानियों और साहित्य का स्वाद चखें और इस साहित्य सरोवर में गहरे गोते लगाकर प्रेम, त्याग, बलिदान, करुणा और आदर्श सरीखे बेशकीमती मानवीय रत्नों को अपने भीतर आत्मसात करें। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी ज्यादातर रचनाएं हाशिए के लोगों को केंद्रीय धुरी बनाकर लिखी। ठाकुर का कुआं और सदगति जैसी कहानी, दलितों और हरिजनों के जीवन की पीड़ा, छुआछूत के कलंक और सवर्ण जातियों के खोखलेपन पर करारा प्रहार है। बेटों वाली विधवा और बूढ़ी काकी कहानी समाज में स्त्रियों, खासकर विधवाओं के बेरंग से जीवन और रहम के जूठन पर जिंदा

0: रहने वाली स्त्रियों की कहानी है। प्रेमचंद पूंजीवाद और सामंतवाद के धुर विरोधी थे। शतरंज के खिलाड़ी और नशा जैसी कहानी जमींदारी प्रथा की क्रूरता और सामंतीय विलासिता के इर्द गिर्द बुनी हुई कहानी है। पूस की रात कहानी मेहनतकश किसान की त्रासदी कथा है। वहीं दो बैलों की कथा में हीरा और मोती जैसे मानवेतर प्राणियों को रचकर किसानी जीवन में प्रेम और श्रेय का अनुपम मेल प्रेमचंद ने दिखाया है। ईदगाह आपको याद है, यह मुंशी प्रेमचंद की चिर परिचित कहानी है। और अमीना का पोता हामिद तो बालमन का वह रूप है जिसे कभी भूला ही नहीं जा सकता। अभाव कैसे बच्चे को तराशती है इस कहानी में दिखाया गया है। हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम की एकता, आपसी भाईचारे के कई उदाहरण प्रेमचंद की कहानियों में बिखरे पड़े हैं। कहानियों के अलावा प्रेमचंद के उपन्यासों में मानव समाज अपनी तमाम दुर्बलताओं, विद्रूपताओं और खामियों के साथ उपस्थित हुआ है, जिसे आज भी कहीं ना कहीं हमारा समाज जूझ रहा है। सेवा सदन में दहेज प्रथा और वैश्यावृत्ति के पीछे छिपे कारणों की तलाश की गई है। वहीं प्रतिज्ञा उपन्यास सन 1929 में प्रकाशित हुआ, जिसमें विधवा विवाह की समस्या पर बहुत तेरे प्रेमचंद ने अपनी कलम चलाई। लेकिन सन 1929 में प्रकाशित यह उपन्यास आज भी आज के समकालीन साहित्य और समाज में उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी भारतीय समाज में विधवाओं की समस्या घर परिवार, रिश्तेदारी, समाज और देश में ज्यों की त्यों पड़ी है। गबन में प्रेमचंद जालपा के बहाने महिलाओं का गहनों के प्रति लगाव और दाम्पत्य जीवन में अति महत्वाकांक्षाओं के कारण उपजी समस्या का चित्रण करते हैं। रिश्वतखोरी और गबन तब भी हकीकत था और आज भी हमारे समाज की नंगी सच्चाई। निर्मला उपन्यास स्त्री जीवन की महागाथा है। निर्मला और तोताराम के दाम्पत्य जीवन के माध्यम से प्रेमचंद समाज में फैले अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, चारित्रिक शंका जैसे घृणित विचारों के दुष्परिणामों की तस्वीर खींचते हैं। निर्मला की दुर्गति भारतीय समाज में स्त्रियों की दुर्गति का पर्याय है, जिसे आज भी घर की दहलीज में कैद औरतें नहीं लांग पाई। वहीं रंगभूमि और कर्मभूमि स्वातंत्र्य चेतना और अदम्य जिजीविषा का अनूठा उदाहरण है। डिप्रेशन, तनाव, अकेलेपन से जूझते आज की युवा पीढ़ी के सामने अंधे सूरदास का चरित्र और जीवन जीने की इच्छा अदम्य साहस का सशक्त प्रमाण है। उपन्यासों पर चर्चा हो तो भला सन 1936 में आई प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को आखिर कैसे भूला जा सकता है। गोदान मानवीय जीवन की महागाथा है। यहाँ आकर प्रेमचंद आदर्श का गला घोंट यथार्थ की भूमि पर समाज में हो रहे बदलाव की आहट को चुपचाप बेबसी और लाचारी भरी आंखों से देखते नजर आते हैं। होरी और धनिया की कहानी भारतवर्ष के धरती पुत्रों की कहानी है। आज भी सबके लिए अन्न उपजाने वाला किसान स्वयं दो वक्त की रोटी के लिए सत्ता से टकराता नजर आता है। सच पूछे तो आज भी प्रेमचंद अपनी कहानियों, अपने पात्रों और अपने पात्रों के संवादों के जरिए हमारे बीच जिंदा हैं। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह वह सवाल है जिससे हर आदमी रोटी की जुगाड़ में सुबह उठने से लेकर देर रात बिस्तर पर लौटने तक प्रतिदिन टकराता है। मुंशी प्रेमचंद कालजीवी थे, अतः कालजयी भी हैं। इनकी लेखनी आज के समकालीन युवा साहित्यकारों के सामने प्रेरणा के रूप में मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचंद के जीवन मूल्यों और साहित्य को पढ़कर मन बरबस ही यह कहने के लिए ललक उठता है कि यूं तो तारीख रोज आती है और हर तारीख को कोई पैदा होता है, मगर अमरता की तारीख किसी किसी को नसीब होती है। हर दिन प्रेमचंद पैदा नहीं होता।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में

0: स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: समकालीन साहित्य और मुंशी प्रेमचंद। आज मुंशी प्रेमचंद के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में युवानी कार्यक्रम में हम सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था समकालीन साहित्य और मुंशी प्रेमचंद। वार्ताकार थे बिंदु चौहान। श्रोताओं, वार्ता भी आपने सुना। इस वार्ता के सुनने के उपरांत यह बात तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समसामयिक समाज की, सामाजिक व्यवस्था की जो चर्चा की है, कलमबद्ध किया है, उसके उपयुक्तता की बात अगर वर्तमानकालीन वर्तमान के समाज में तुलना करें या वर्तमान समाज में उसकी उपयुक्तता की बात करें, तो उसकी प्रतिशतता कहीं और बढ़ ही जाती है, घटती नहीं है। और ये जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां थी, मुंशी प्रेमचंद इसी पर अपने अपनी भावना को कलमबद्ध किए, और आज भी उतनी ही आवश्यक है जितना पहले था। युवा श्रोताओं, यह कहना मैं इसलिए चाहता हूं कि आज की युवा यदि साहित्य की ओर अग्रसर हो, साहित्य को पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को अगर पढ़ें, तो उन्हें सामाजिक स्थितियों का वास्तविक भान हो जाएगा। जो आज भी समाज मुंशी प्रेमचंद के युग का जो समाज था, उससे कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। और हम उस पर चिंतन करें, मनन करें, और युवा होने के नाते हम उन तमाम बुराइयों और कुरीतियों को हटाने, मिटाने और नष्ट करने का प्रयास करें। फिलहाल सुनते हैं युवानी कार्यक्रम में, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लोकगीत।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लोकगीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बोल हैं विनती करै छी महाकाली, स्वर है ममता कुमारी के।

0: आए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। विज्ञापन से पूर्व जो लोकगीत आपने सुना ममता कुमारी के स्वर में, और अब जो हम लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत, इसको स्वर दिया है संगीता सिन्हा ने। बोल हैं तोहरा से राजी ना रे सजनवा, तोहरा से राजी ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें।

0: फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: विज्ञापन से पूर्व आपने सुना लोकगीत। युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं लोकगीत। आगे जो लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका बोल है, तुलसी पूजब हम भोरे भोर, कुमुद अखौड़ी का स्वर है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से, और युवानी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ मैथिली गीत। आइए सुनते हैं अगला मैथिली गीत। कलाकार हैं सूर्य नारायण पोद्दार, बोल हैं सुतली छली हम घर बारे।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ युवानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में कुछ नए फिल्मी गाने। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आदि पुरुष का यह गीत, जिसका बोल है तू ही शीतल धारा। कलाकार हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल। संगीत दिया है अजय अतुल ने और बोल को लिपिबद्ध किया है मनोज मुंतशिर ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म भोला से। बोल हैं नजर लग जाएगी।

0: डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओ, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अब अंत के चरण में हम आ पहुंचे हैं। जाते जाते ये फिल्म संगीत छिपकली फिल्म का ये गीत बोल है जिंदा हूं, शान के स्वर हैं, मीमू के संगीत, सोहन मजुमदार के गीत। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत जिंदा हूँ। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। संध्या के 6 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों बाद। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: ভোর হইতে উঠি যাও, কি একটা ইজতক পহিল কিরণ সঙ্গ ফুলায় লাগাইত আছে, ফুল প্রকৃতি মে ঘোরায় লাগাইত আছে, উড় যা আবাওয়ালা কাল লেল।
1: প্রগতি তখনই ভ সকইয়ে যখন পুরুষ আর মহিলা সমান রূপ সা সব ক্ষেত্র মে এক রঙ হুনকা অধিকার প্রাপ্ত হেতে।
2: আ মনুখ লেল তো বুঝো অত্যন্ত জরুরি, পানি বুনি নেই হ্যাত তো খেতি নেই হ্যাত, আর খেতি যখন নেই হ্যাত উপজা নেই হ্যাত তো আমরা লোকেন খ্যাব কি।
3: মামা বলে জানে বাবা জেনে জাদা।
4: नमस्कार
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
6: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
5: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2000

0: 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर। श्रोताओं, आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले अगले कुछ कार्यक्रमों के विषय में। सबसे पहले जो सभा जारी है, सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं। 6:10 पर हम सुनेंगे हफ्तावार जायजा, जिसे प्रस्तुत करेंगे मोहम्मद सनाउल्लाह। 6:15 पर हम आपको सुनवाएंगे विद्यापति गीत। 6:25 पर हम सुनवाएंगे आपको मैथिली संवाद, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर ग्रामीण परिवेश पर आधारित हमारा कार्यक्रम होगा गाम घर। 7:00 किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। 7:30 पर हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल होगी 7:47 पर, जिसे पटना से रिले किया जाएगा। 7:52 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत।

संसद समीक्षा जिसे दिल्ली से रिले किया जाएगा 8 बजे आप सुन पाएंगे। हमारा मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार 8:15 पर प्रस्तुत किया जाएगा। समाचार संध्या 8:45 पर न्यूज 8:09 9 बजे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:15 पर उर्दू खबरें भी आप दिल्ली से सुनेंगे और 9:30 पर हम फिर अपने आकाशवाणी दरभंगा केंद्र से आपको सुनवाएंगे शब्द शिल्प। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुति नितेश कुमार मिश्रा की। प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य के बारे में इस पर वार्ता भी आपको सुनवाएंगे और वार्ताकार होंगे सुशील कुमार कर्ण। 10 बजे हम आपको रफ़ी की यादें, यानी आज रफ़ी के कुछ गीत आपको सुनवाएंगे और फिर 11 बजे हम आपको

अब हम जानकारी पढ़ लें, जानकारी दे दें आपको कि कल यानी 1 अगस्त को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में 5:50 पर हम आपको चिंतन सुनवाएंगे, 5:55 पर कृषि चर्चा, 6:00 हिंदी समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, स्वास्थ्य चर्चा का समय होगा 6:05 पर, 6:10 पर हम आपको भक्ति गीतों का कार्यक्रम सुनवाएंगे वंदना, 6:40 पर रामचरित मानस, फिर

संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करवाएंगे और 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात के लिए फिर हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली, जहाँ से समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़, खबरनामा और फिर प्रादेशिक समाचार पटना से प्रसारित किया जाएगा। फिर अंजुमन कार्यक्रम आपको पटना से ही रिले किया जाएगा 9:10 पर। 10:00 फिल्म संगीत हम दरभंगा आकाशवाणी से आपको सुनवा पाएंगे। भक्ति संगीत का समय होगा 10:30 यानी 10:30 पर। 11:00 हम आपको शास्त्रीय संगीत के तहत सुनवाएंगे संतूर वादन, संतूर वादक होंगे पंडित भजन सोपोरी। फिल्म संगीत का समय होगा 11:30 पर। और फिर 12:00 भी हम आपको फिल्म संगीत सुनवाएंगे 12:30 पर। नारी संसार तो ये था कल प्रसारित होने वाले पहली सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही संपन्न होता है। अब आपको सुनवाते हैं विद्यापति गीत।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत गौतम मिश्र के सुर में। आइए अगला गीत सुनते हैं जिसका बोल है आशक लता लगाओल सजनी के।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है हफ्तावार जायजा का, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं मोहम्मद सनाउल्लाह।
1: सामईन आदाब। जायजे के इशारे। जमीयत उलमाए हिंद ज़िला दरभंगा के मशावरती नशिस्त का इनेकाद। गुलशन रसूल कॉन्फ्रेंस, दीन के पैगाम, मोहब्बत और उखवत पर जोर। बज़्म रहबर दरभंगा की 286वीं माहाना शेरी नशिस्त का इनेकाद। DM की सहयोग पोर्टल पर मौसूल दरख्वास्तों पर तेज़ी लाने के लिए मीटिंग। DM की सदारत ज़मीनी तनाज़ात और अवामी शिकायत के मामला पर जायज़ा मीटिंग। और अब तफसील। जमीयत उलमाए हिंद ज़िला दरभंगा की सहमाही मशावरती नशिस्त ज़िला के अली नगर ब्लॉक में वाक़ मदरसा बाबुल उलूम में मुनाक़िद हुई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना व मुफ्ती नज़रुल बारी अन्नदवी सदर जमीयत उलमा ज़िला दरभंगा ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मुफ्ती अमीरुल हक़ कासमी नाज़िम जमीयत उलमा ज़िला दरभंगा ने अहसन तरीके से अंजाम दिया। नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ इम्तियाज़ अहमद रहमानी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाना जावेद अख्तर रहमानी ने हाजिरीन को मशहूर किया। इफ्तिताही खिताब में मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद नज़रुल बारी नदवी सदर जमीयत उलमा ज़िला दरभंगा नशिस्त के अगराज व मकासद पर गुफ्तगु करते हुए जमीयत उलमा की 100 साल से ज़ायद अरसे पर मुहीत खिदमात का तज़किरा किया। उन्होंने अरकान मुंतज़िमा से ज़मीनी सतह पर काम करने और जमीयत के शोबों को मरकज़ की हिदायत और सूबों की निगरानी में अमली जामा पहनाने पर जोर दिया। सदर जमीयत उलमा ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मकामी यूनिट ही असल ताकत है। मकामी जमीयत जितनी फ़ाल होगी, ज़िली जमीयत उतनी ही मजबूत होगी। दरभंगा ज़िला के मोहम्मदपुर में गुलशन रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती खानकाह तेगिया गिदरगंज के सज्जादा नशी मौलाना मेहदी रज़ा रोशन अलकादरी ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से हुआ, जबकि हमदोनात की पेशकश के बाद

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित भऽ गेल अछि। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार आ पारित करबा लेल चर्चा शुरू कयलनि। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विपक्षक हंगामाक मध्य विधेयक प्रस्तुत कयलनि। सदन में बिना कोनो चर्चाक हंगामाक मध्य ई विधेयक पारित भऽ गेल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एहि विधेयक पर चर्चा में भाग नहि लेबा लेल विपक्षक आलोचना कयलनि। विपक्ष नीट मुद्दा पर छात्र लोकनिक विरोध प्रदर्शनक दरमियान भेल कथित पुलिस कार्रवाई सहित कतेको मुद्दा पर हंगामा कयलक, जाहि कारणे संसदक दुनू सदनक कार्यवाही आई प्रभावित भेल। हंगामाक कारणे सदनक कार्यवाही दिन भरे लेल स्थगित कऽ देल गेल। सदनक अगिला कार्यवाही 3 अगस्त कऽ भोर 11 बजे होयत। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वर्ष 2026-27 सँ 2030-31 धरि जारी रखबाक स्वीकृति दऽ देलक अछि। सूचना आ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहलनि जे एहि योजना लेल 5 वर्षक अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ टाकाक वित्तीय आवंटन स्वीकृत कयल गेल अछि। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार के बढ़ावा देबा लेल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयलक अछि। आयुष मंत्रालय जनौलक जे समझौताक उद्देश्य उभरैत प्रौद्योगिकी के उपयोग कऽ पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य क्षमता निर्माण और नवाचार के मजबूत करब अछि। भोजपुरक भरत तिवारी एनकाउंटर मामला में पुलिस पैघ कार्रवाई कयलक अछि। पुलिस भरत तिवारी के गोली मारवला एसटीएफक जवान अक्षय कुमार के गिरफ्तार कयलक अछि। आरोप अछि जे आत्मसमर्पणक बाद भरत तिवारी के सबसँ पहिने अक्षय कुमार गोली मारने छल। पुलिस तकनीकी अनुसंधान आ जांचक आधार पर आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सेहो एहि मामला पर कड़गर कार्रवाई करबाक निर्देश देलनि अछि। राज्यक 7 जिला में शीघ्रहि 50 बेड वाला आयुष अस्पताल स्थापित कयल जायत। केंद्र सरकारक सहयोग सँ स्वास्थ्य विभागक अंतर्गत राज्य आयुष समिति एहि अस्पताल सभक संचालन के तैयारीक अंतिम रूप दऽ रहल अछि। बेगूसराय, सिवान, गया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और मोतिहारी में बनय वाला एहि अस्पताल सभ में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति सँ इलाजक सुविधा भेटत। प्रदेश में मॉनसूनक सक्रियता से बरखाक परिस्थिति बनल अछि। पछिला 24 घंटाक दरमियान राज्यक अधिकांश भाग में हल्का से मध्यम स्तरक बरखा दर्ज कयल गेल। मौसम विभाग अगला 24 घंटाक दरमियान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी आ पश्चिम चंपारण जिला में भारी बरखा के लऽ कऽ येलो अलर्ट जारी कयलक अछि। विभागक अनुसार 5 अगस्त धरि राज्यक अधिकांश भाग में मध्यम से भारी बरखा सकैत अछि। एहि दरमियान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ हवा चलबाक सेहो संभावना अछि। सुपौल जिलाक किशनपुर अंचलक मौजहा पंचायतक वार्ड नंबर 14 स्थित पचगछिया गाम में कोसी नदी कटाव सँ

0: कक सोझा पलायनक खतरा बनल अछि। कटाव सँ सरकारी जल नल योजनाक अंतर्गत निर्मित पानिक टंकी ध्वस्त भऽ गेल। किशनपुरक प्रभारी अंचलाधिकारी जियाउल कमर जनौलनि जे एखन धरि कटावक चपेट मे आबिकऽ 15 घर नदी मे डूबि गेल। ओ कहलनि जे प्रभावित परिवारक सहायताक लेल कार्रवाई कयल जा रहल अछि। नेपालक सुनसरी मे दू समुदायक मध्य तनाव के देखैत प्रशासन धनुषा आ सिरहा जिला मे कर्फ्यू लगा देलक अछि। कर्फ्यूक कारणे जयनगर सँ नेपालक विजलपुरा धरि चलय वला ट्रेनक परिचालन अगिला आदेश धरि स्थगित कऽ देल गेल अछि। विधान पार्षद देवेश कुमार अपन पद सँ इस्तीफा दऽ देलनि अछि। देवेश कुमारक कार्यकाल 27 मार्च 2027 धरि छल। श्री कुमार 2021 मे विधान पार्षद बनल छलाह। मधुबनी जिलाक विभिन्न थाना क्षेत्र मे उत्पाद विभागक टीम विशेष अभियान चलाकऽ भारी मात्रा मे देशी आ विदेशी शराब जब्त कयलक अछि। जुलाई मास मे कार्रवाईक दरमियान 320 आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गाम घर। तो आइए सुनते हैं गाम घर।

कार्यक्रम गाम घर सुन्निहार समस्त स्नेही श्रोता लोकनिक देवू भाईक नमस्कार संगहि नन्हा मुन्हा राही के कार्यक्रम में सेहो स्वागत अछि। आइ धियापुता के लेल हमरा लोकन ई कार्यक्रम लऽ कऽ आबै छी। आइ शुक्र दिन अछि, आजुक दिन के हमरा लोकन सुनै छी साप्ताहिकी कार्यक्रम किसले जे धियापुता सँ संबंधित कार्यक्रम होइत अछि। ठाम ठाम इसकुलक धियापुता के मुख सँ खिस्सा पिहानी कविता सुनै छी। एकर उपरांत बाल गीतक आनंद सेहो लेब, मुदा ओहि सबसँ पहिने किछु अपनामे दू टप्पी गपशप कऽ ली। श्रोता लोकनि, आइ गपशप करब जे जीवनमे लक्ष्यके प्राप्त करबाक लेल हमरा लोकनिके छात्र लोकनिके जागरूक रही, जाहिसँ जीवनमे लक्ष्यके प्राप्त भऽ सके। धियापुता आ छात्र लोकनि जीवनमे लक्ष्यके प्राप्ति करबाक समय प्रबंधन बहुत ही महत्व राखैत अछि। एकटा कहबित अछि जे काल करू से आइ करू, जे आइ करू से आब। जँ एहि तरहक फॉर्मूलाके अपना कऽ जीवनमे चलब तऽ अवश्य अछि जे समयक संग संग लक्ष्यके प्राप्ति अवश्य होयत। परिवार जे छै एकटा प्रमुख जे संस्था अछि। धियापुता परिवारक प्रथम पाठशाला कहल गेल अछि, तैं लक्ष्यके प्राप्तिमे हुनक बड़ पैघ महत्व राखैत अछि। तैं धियापुताके माता पिता आ घरक सदस्य लोकनिके आज्ञाके पालन करबाक चाही।

0: परिवार और माता पिता के बाद गुरु शिक्षक का स्थान आबैत अछि। एकटा कहबित अछि जे गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तें गुरु पूजनीय होइत अछि, तें धियापुता के अभिरुचि लक्ष्य के प्राप्ति करबा में अभिरुचि के बड़ पैघ महत्व राखत अछि। माता पिता अभिभावक के चाहियन जे धियापुता सँ हुनक अभिरुचि के बारे में सेहो जानबाक प्रयास करबाक चाही। धियापुता के जाय क्षेत्र में रुचि अछि, जाय क्षेत्र में ओ जाय चाहै छथि, माता पिता आ घरक सदस्य लोकन के सेहो हुनक रुचि के अनुकूल सहयोग करबाक चाही। श्रोता लोकन, शैक्षणिक परिभ्रमण एकटा ज्ञान के सेहो बहुत पैघ भंडार होइत अछि। तें श्रोता लोकन, लक्ष्य के प्राप्ति करबा में वैज्ञानिक आ शैक्षणिक परिभ्रमण के विशेष स्थान राखल गेल अछि। शैक्षणिक परिभ्रमण करौला सँ धियापुता के बौद्धिक नैतिक विकासता होइते अछि, संग संग स्थानीय औद्योगिकी, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक आ आन आन ज्ञान के प्राप्ति सेहो होइत अछि। ज्ञान के संग संग आ शिक्षा के संग संग धियापुता व्यायाम सेहो हमरा लोकन के करबाक चाही, किएक तऽ कहबी छै जे स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन के वास होइत अछि। जहन स्वास्थ्य नीक रहत तखने कोनो काज करबा में जे रुचि अपने के जागत। तें हमरा लोकन के, धियापुता लोकन के आ समाज लोकन के सेहो जे पढ़ाई लिखाई के संग संग स्वास्थ्य के नीक रखबाक लेल व्यायाम खेलकूद जीवन में बहुत जरूरी होइत अछि। कहबितो अछि जे स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन के वास होइत अछि। जहन स्वास्थ्य नीक रहत तखने अहाँ लक्ष्य के प्राप्ति कऽ सकै छी। व्यायाम के संग संग खान पान पर सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही। खान पान में तेलिए मर मसाला से बच के रहबाक चाही। मौसमी फल फूल फल आ तीमन तरकारी के जे छै व्यवहार करबाक चाही। जो आइ तरहे हमरा लोकन खान पढ़ाई लिखाई के संग संग खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखब तो अवश्य अछि जे हमरा लोकन के लक्ष्य के प्राप्ति हैत। धियापुता बेर रहत तो फिर आगू गपशप करब, मुदा हमरा लोकन जे छै जे एकटा हमरा लोकन जे प्रायोजित कार्यक्रम हमरा लोकन लऽ कऽ आबै छी जे किसले, तऽ ई हमरा लोकन ई किसले हमरा लोकन सुनै छी। ई अछि हकौक मिडिल इसकुल लहरियासराय दरभंगा, धियापुता के मुख्य ई कार्यक्रम हमरा लोकन लऽ कऽ आबै छी। संकलन आ वाचन आ निर्माण में सहयोग अछि आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊद के। तऽ आओ हमरा लोकन ई सुनी।
1: धियापुता जय हिंद।
2: बौआ, अपना सभक जिंदगी हर लम्हा किछु ने किछु सिखाबैत अछि, हरेक तजुर्बा से नव उम्मीद जगाबैत अछि। अहाँके हरेक पल सिखबाक हुनर अगर आबि जाए तऽ फेर देखियौ ने, नव करिश्मा।

0: से जिंदगी अहाँ की दिखाबित है आजुक किसलय कार्यक्रम है हेकॉक इंस्टीट्यूशन मध्य विद्यालय से
1: एत बहुत रास धियापुता बैसल बहुत किस सुनाब आओ आप हिंदे सबसे गपशप करी बुआ की नाम छी अहाँ
2: हेमा कुमारी
0: आजुक कार्यक्रम में की सुनाब चाहे छी
2: सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु
0: सुनो
2: यह सभी मेरे साथ सुनाई
0: बुआ की नाम छी अहाँ
2: आरती ज्योति
3: विद्या कुमारी
4: साजदा परवीन
5: नंदिनी कुमारी
0: अहाँ सब मिलकर सुंदर सन गीत सुनाब चाहे छी सुनो
6: सुबह

0: की नाम छे आका?
1: नंदिनी कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में की सुनावा चाहे छे?
1: गांधी जी के बारे में कुछ
0: सुनाओ।
2: मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं हैकॉक इंस्टीट्यूशन मध्य विद्यालय कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय गांधी जी पे है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। सत्य स्नेह कर्तव्य निष्ठा का मिश्रित एक प्रकार है। साधारण से सर्वोत्तम का एक उदाहरण अनुपम है। सुख मिले सकल जनमानस को गांधी वह व्यवहार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। क्षेत्र नहीं कोई था ऐसा जो रहा अछूटा गांधी से। ताकत ऐसी कोई न थी जो लड़ सके भयंकर आंधी से। बनकर पर्याप्त अहिंसा का सभी शक्तियां बौनी कर दी। जिसके समक्ष कोई न टिका गांधी वह प्रहार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। भेद मिटाया दोनों का, जूझ रहे जो कष्टों से थे, कष्ट मिटाया उन दिनों का। इस समाज की बीमारी जो लाइलाज है वर्षों से, उस असाध्य बीमारी का गांधी एक उपचार है। केवल व्यक्ति नहीं है गांधी, गांधी एक विचार है। धन्यवाद।
0: वो की नाम छी आका?
3: हेमा कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में आहा की सुनावा चाहे छी?
1: दोस्तों को समर्पित।
0: सुनो।
2: आज का मेरा विचार सारे दोस्तों को समर्पित है। मैंने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि यह मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा तेरी आवाज मैंने सेव कर रखी है। नंबर तुम चाहे कितने भी बदल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे तेरी आवाज से ही पहचान लूंगा। ये सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही सुंदर कविता याद आ गई। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत पर। तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है ये, वरना जनाजा और बारात एक ही है। धन्यवाद।
0: वो की नाम छी आका?
4: सिमरन कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में की सुनावा चाहे छी?
4: कविता।
0: सुनो।
4: उमड़ ढुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया, बादल आया बादल आया बादल देखो।

धन्यवाद। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया, बादल आया बादल आया बादल, वन उपवन शब्द।

0: कुछ रंग मांगकर इंद्रधनुष रच लाया, बादल आया बादल आया बादल, धन्यवाद।
1: की नाम छी अहाँके?
2: यास्मीन बानो।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
2: कविता।
1: सुनो।
0: मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक न पाते, चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न पाता।
1: बुआ की नाम छी अहाँके?
3: स्नादा प्रवीण।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
3: दिस इज द वे वी वॉच आवर फिश, wash our fish, wash our fish, this is the way we wash our fish, this is the way

0: Where are our clothes? This is the way we wear our clothes.
1: बुआ की नाम छी यहाँ का
2: सत्यम कुमार।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: कविता।
1: सुनो।
3: आना मेरे गांव में नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में, चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाव में, सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में, यहाँ न कोई हाट सिनेमा घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाव में, भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं ना गांव में, मस्ती उस दिन धमा चौकड़ी बेला जब हो गांव में, जब ही लगे गांव में मेला आना प्यारे गांव में। थैंक यू।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का
2: नंदिनी कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: लोकगीत।
1: सुना।

0: बुआ की नाम छे यहाँ का
1: करुणेश।
0: आज कार्यक्रम की सुनाव चाहे
1: कविता
0: सुनो।
1: नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, अब कोई न अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। इस कविता से ये संदेश मिलता है कि बेटी बेटा पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ।
0: बुआ की नाम छे यहाँ का
2: हेमा कुमारी।
0: आज कार्यक्रम की सुनाबो चाहे
2: मानव बनो कविता
0: सुनो।
2: है भूल करना प्यार भी है भूल यह मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। मानव बनो मानव जरा अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। मानव बनो मानव जरा उफहाई कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं इन आंसुओं से सिंच कर, कर दो विश्व का कनकन हरा। मानव बनो मानव जरा अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से कर दो विश्व को उर्वरा। मानव बनो मानव जरा।
0: बुआ की नाम छे यहाँ का
3: अभिजीत।
0: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबो चाहे
3: कविता
0: सुनो।
3: एज रहे रे तन तन ते दू टाटा टबारा माते बेटे दित्ते भाई भाई हम तारे हिंदू तारे मुस्लिम तारे ती इता हम मंदी मंदी दितना अपने अपनी धरती अपन मनन तन तन ते दू टू टाटा।
4: बुआ अपना सबक जीवन में अगर क्यों असल पथ प्रदर्शन करता है तो वो किताबे है। देखल जाए तो किताबक सीधा सीधा संबंध अपना सबक व्यक्तिगत सफलता से है, मुदा इहो निश्चित है जे केवल पढ़े टा लेला से सफलता नहीं भेट जाय छे, संगहि संग कर्म सेहो करिए टा पड़े छे। किताब हुनका सबक लेल मीलक पाथर होय छन जे व्यक्ति कर्मठ छथि आ कर्मे पर विश्वास करै छथि, कियाकि नीक पुस्तक सदैव कखन की आ केना करबाक अछि नीक जगह बुझाबैत अछि सिखाबैत अछि। ई बात सदैव याद राखी जे पाथर के मूर्ति बनेनहार मूर्तिकार अपन हथौड़ा के अनगिनत चोट मारि मारि के मूर्ति के निर्माण करैत अछि। ई निर्माण कोनो एकेटा चोटक परिणाम नहि बल्कि बेर बेर लगातार पड़ल सधल चोटक परिणाम अछि जे मूर्ति के पूर्ण आकार दैत छै। कहबाक तात्पर्य इएह जे कामयाबी रूपी मूर्ति के आकार देबाक वास्ते

शिक्षा ग्रहण क जिंदगी के लक्ष्य पर बस चोट मारे जाए, सफलता अवश्य भेटबे करत। एक संग हम आजू कार्यक्रम के विराम दे छी, एक बेर फिर यही विश्वासक संग विदा ले छी जे फिर भेंट है अगला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख से किस लाइक संग धिया पुता।

हाँ, धियापुता अखन किसले सुनि रहल छलहुँ, हकौक मिडिल इसकुल लहरियासराय दरभंगा। संकलन वाचन आ निर्माणमे सहयोग छला आशुतोष कुमार झा आ प्रस्तुति असद दाऊदके। आब जे छै कार्यक्रमके आगाँ बढ़बैत देखू धियापुता जखन जे ओना तऽ फुहार जो छै ओहन तऽ बरखा नहिए भऽ रहल अछि, आ देख रहल छी जे सावनके हरियालीमे चारू कात हरियाली हरियाली नजर आबि रहल अछि। आ ई हरियालीके के जे सुहनगर जे झुम फुहार होइए एहिमे धियापुताके देखै छी खूब आनन्द लैए पानिमे। तऽ आउ किएक नहि एहिसँ सम्बन्धित एकटा हमरा लोकनि एकटा कजरी सुनी संत कुमार झाके स्वरमे।

हाँ, श्रोता लोकन, अखन हमरा लोकन कजरी सुन रहल छलौ संत कुमार झा के स्वर में। समय के अनुकूल हमरा लोकन जे कजरी सुनलौ, आब एकरे संग देखो जे किसले कार्यक्रम के समेट क आब हमरा लोकन खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाही। तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त किसान श्रोता लोकन के स्वागत करे छियन, नमस्कार करे छियन। किसान श्रोता लोकन, खेती गृहस्थी पर गपशप करब, मुदा ओइसे पहिने किछ कार्यक्रम संबंधी सूचना अछि, ओकरा पहिने हमरा लोकन जे छै सुन ली। श्रोता लोकन, स्तनपान नवजात शिशु के लेल बड़ पैघ जरूरी अछि। स्तनपान माता के लेल सेहो फायदेमंद अछि। स्तनपान के फायदा ई अछि, आकाशवाणी दरभंगा के फोनिंग कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगला अंकक विषय विशेषज्ञ हैत डॉक्टर जम्मू रद्द प्रवीण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़बाक लेल फोन नंबर अछि 0062727 2। ई अछि हमर कोड नंबर। फोन नंबर अछि 2224481। दोसर नंबर सेहो टेप लेल जाउ, 9430029353। समय याद राखी, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। एकरे संग ई कार्यक्रम संबंधी सूचना सम्पन्न भेल। आब पुनः कार्यक्रम में खेती गृहस्थी में किसान श्रोता लोकन के स्वागत करे छियन। किसान श्रोता लोकन, आजुक खेती गृहस्थी में चर्च करब जे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर। किसान श्रोता लोकन, कखनो काल के उर्वरक के हाट बाजार में अभाव आ बहुमूल्य भेला सँ एकर सदुपयोग हेबाक चाही। रासायनिक उर्वरक के जैविक खाद के संग व्यवहार कयला सँ उर्वरक के उपयोगिता फसल के संग बेसी सँ बेसी कयला सँ माटिक उर्वरा शक्ति आ उपजा शक्ति में वृद्धि होइत अछि। केवल जैविक खाद के व्यवहार नहि कयल जा सकत अछि, कारण जे एहिमे पोषक तत्व के मात्रा कम होइत अछि। ओतहि जँ समेकित पोषक तत्व प्रबंधन व्यवहार सँ फसल के संतुलित मात्रा में पोषक भेटत रहत अछि। रासायनिक उर्वरक के 10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक और नील हरित शैवाल के संग धान फसिल में उपयोग कयला सँ अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 कम कयल जा सकत अछि। फास्फेट के बचत जैविक खाद के व्यवहार सँ प्राप्त कयल जा सकत अछि। 10 टन बायोगैस सलरी कंपोस्ट बा जलकुंभी कंपोस्ट के व्यवहार सँ धान आ गेहूँ में 30 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर, एकर उपरांत आन पोषक तत्व के बचत सेहो होइत अछि।

किसान श्रोता लोकन जैविक खाद के संग फास्फेट के घुलनशील बनाबे वाला फास्को बैक्टीरिया जीवाणु के संग व्यवहार कैला से चूना युक्त और अम्लीय माटि में प्राप्त फास्फोरस मात्रा के बढ़ावत है। 10 टन केला धर आ पात से बनल कंपोस्ट के व्यवहार से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास के बचत प्रत्येक धान आ गेहूँ में कैल जा सकत है। ओना ही 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गर्मा मूंग से प्राप्त फसल अवशेष के माटि में गाड़ला से अनुशंसित उर्वरक के 1/4 बचत प्रत्येक धान आ गेहूँ के फसल में कैल जा सकत है। किसान श्रोता लोकन 10 टन जैविक खाद के संग धान आ गेहूँ के अवशेष के 1% यूरिया के घोल में डुबा के माटि में 3 बरख धरि लगातार व्यवहार कैला के बाद धान और गेहूँ सबटा फसिल में 50% अनुशंसित उर्वरक के बचत कैल जा सकत है। ऐ तरहे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन से पोषक तत्व कमी के दूर कैल जा सकत है। किसान श्रोता लोकन बेर रहता फेन आगू गपशप करब, मुदा वैसे पहिने कुछ हमरा लोकन एकटा लोकगीत सेहो सुन ली, तो आब हमरा लोकन सुनै छी अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह के स्वर में ई लोकगीत।

0: पूजब चरण नित तोर। अखन हमारा लोकन अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह के स्वर में ई लोकगीत सुनल छलो, खूब निक लागल। आशा करै छियन जे श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। आब देखो किसान श्रोता लोकन, अखन जो छै जे ओना तऽ ऊपर वाला बरखा नहिए दऽ रहल अछि, मुदा हमरा सभक जे कर्तव्य अछि ओ तऽ करै के तऽ अछि। तऽ हमरा लोकन के जो छै मौसम के देखत और जे धान के जे बिचड़ा लगेने छी, तऽ धान के बिचड़ा के कोना समय पर जेकरा कदबा विधि द्वारा खेतीबाड़ी करी, तऽ वही सब सँ संबंधित एकटा हमरा लोकन एकटा भेंटवार्ता सुनै छी। भेंटवार्ता के विषय अछि कदबा विधि से धान की खेती पर। भेंटवार्ताकार अछि भोला यादव, इनका से गप कऽ रहल छथि देवनान यादव।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी सोन्हा गांव। ई गांव दरभंगा सदर प्रखंड वासदेवपुर पंचायत के अंतर्गत आबैत अछि। एतौके जे किसान के जे देख रहल छी जे काफी कर्मठ अछि, मेहनती अछि और परिश्रमी सेहो अछि। देख रहल छी जे चौर चाकर में जे किसान श्रोता लोकन अपन खेती बाड़ी में लागल छथि, तऽ आउ एहि क्रम में एतौके किसान से गप सप करी। श्रीमान अपने के की नाम?
2: हमर नाम भोला यादव भेल।
1: भोला यादव जी, अपने जो खेती बाड़ी जो कर रहल छी है, अखन कोन कोन फसल के तैयारी चल रहल छै?
2: अभी तो सीजन के हिसाब से अभी धान के खेती के तैयारी चल रहल छै।
1: धान के तैयारी चल रहल छै। धान के खेती में जो छै यहाँ के जो छै खेती बाड़ी जो अपने धान के जो करै छियै, तऽ कोन विधि से खेती करै छियै? कदबा विधि से करै छियै या छिटकाव विधि से करै छियै?
2: कदबा विधि से हम सब करली। ठीक है, ओय के बाद अपना बीज रोपण भेल, कदबा कऽ के ई हिसाब से अपना खेती करै
1: छियै। जे छै बरखा बुनी नहीं भ रहल छै, तऽ एहि बेर में जे अहाँ की कहब, की चाहै छियै?
2: क्यों, बरखा तो मेन समस्या छै, पानी उनी नहीं होइ छै, लेकिन हम सब की करबै, किसान छियै की वह पे खेते पथार पर डिपेंडेंट छियै, तऽ ओकरा लेल हम सब विशेष बोर्डिंगे से पानी पटा करके खेती बाड़ी होइ छै, कदवा कऽ के अपना वह में बिया बाव सब लगाबै, तऽ पानी के विशेष दिक्कत होइ छै। ई अभी वैसे भी जलवायु परिवर्तन सब भऽ रहल है, ढेर प्रकार के दिक्कत होइ छै, कहीं बारिश नहीं होइ छै।
1: बहुत नीक गप कहले की जलवायु परिवर्तन। भोला जी, अखन जो जलवायु परिवर्तन जे आम जीवन कोना प्रभाव?
2: देखिए, अभी आने वाला समय में देखियो जलवायु एक बहुत बड़ा असर कर रहा है, खास कर एग्रीकल्चर के खेती गृहस्थी के क्षेत्र में होइ छै जलवायु परिवर्तन में। निचली स्तर से गर्मी बढ़े, सूखा पड़ रहा है, समुद्री के जल स्तर बढ़ रहा है, पानी गर्म भ रहा है, नीचे धरती गर्म भ रहा है, एकरा कारण ई परिवर्तन देखे के मिले। अब धरती में नमी और पानी के कमी जब है, तो किसान खेती केना करे? एकरा लेल भारत सरकार विशेष तरह के उपाय और विशेष तरह के एग्रीकल्चर में व्यवस्था करल गेले है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है कि आप किसान को कैसे खेती किया जाए, जब इस तरह का मौसम आवे कैसे खेती, सारा भारत सरकार सुविधा दे रहे हैं, और जहां एग्रीकल्चर विभाग में जा करके जानकारी ले हमारे किसान भाई सब, और देखे कि खेती गृहस्थी कैसे किया जाता है, ये सब पे ध्यान।
1: बहुत नीक गप कहलिए। अखिनका जो छै जलवायु परिवर्तन, ओना तो एकटा समय छल जे जखन जलवायु एतौ के ठीक छल भोला भाई, तो तखन जो छै होइ की छलै कि जे सारा पर्यावरण भ रहल छल, तऽ अखिनका समय में दिन प्रतिदिन देख रहल छै जे जलवायु परिवर्तन भेला के कारण आम जीवन पर तऽ प्रभाव पड़ते अछि, संग संग खेती बाड़ी पर सेहो प्रभाव पड़ रहल छै, संग संग माल मवेशी और खेती बाड़ी के दोनों एक दूसरे के पूरक सेहो कहल गेल अछि। अपने जो खेती बाड़ी जो करै छियै, तो अपने जो वर्षा के पानी से करै छियै या बोरिंग लगा के या नहर से द्वारा करै छियै?
2: देखियो, अब ओन बात नै रहलै नहर की, तऽ देखियो होइ छै कि बोरिंग करेने छी 2 से 5 सेंटीमीटर अपना धान खेत में पानी के ऊंचाई रखै छी, ताकि 2 से 5 सेंटीमीटर पानी अगर उसमें रहते खेत में लवालब, तभी जाकर के ओकर बीज बढ़िया से न। धान के खेती में सभी किसान भाई बहन सब के एक बात के जरूर ध्यान दे के चाहिए, पानी में कदवा लग जाय छे, कदय जब और पथार वहे कदय पे होय लगे छे, ई सबसे के चीज के विशेष ध्यान रखे के चाहिए। जब बीज रोप दिलियै बिया के, तब कुछ दिन के बाद हेंगाई करू, हम सब हेंगायो करै छियै कि ताकि पेड़ पौधा में कदवा कदय ई सब नहीं लगे, वहे जाके बाद में खर पतवार सब दिक्कत करै छै और अनाज बढ़िया से नहीं फैले।
1: बहुत नीक गप कहलिए। अपने जे खर पतवार नियंत्रण होइ छै कि जी हम

0: खेती करै छियै, ओहिमे तऽ बीया पाव लगाबै छियै, मनोखो थोड़ा जे धान लगाबै छियै, रंग बिरंगक जो छै धान के जे छै बुआइ सेहो करै छियै। मुदा देखै छी कि जेना बिना बुलाल मेहमान जका जे मेहमान पहुँच जाइ छथि, ठीक ओना ही जे देखै छी जे खर पतवार आगू आगू आ फसिल पाछू पाछू, तऽ ई खर पतवार के नियंत्रण लेल अपने जो छै केना की करै छी?
1: होइ छै कि पहला तऽ कदवा कऽ देली, बीया रोपि देली, बीया कनी नमहर भेल, देखली पानी सब में कदै लग गेल, तऽ कदै के हेंगाई करै छी, अपने अपने हेंगाई केलहुँ आ पेड़ के फैलेलहुँ। उसे की होइ छै, बीज के जे बीया के पेड़ सब होइ छै छतरल, ओहिमे तरह तरह के अपना जड़ सब चतरे रहलक, ओहिमे तऽ दाना ज्यादा होइ ठीक छै। आ कदवा कदै हटलक तऽ खर पथार सब वही से होइ छै, ओहिमे तरह तरह के पैदा लेलक, तऽ ओ सब हटल रहतै, काई सब लगल रहै छै ओ सब हटल रहतै, एहन मुसीबत। हाँ, ढेर प्रकार के सरकार केमिकल दवाई सब लेने छै, वो सब के छिड़काव होइ छै ताकि ई सब तरह के पौधा के उत्तर न फसल में दिक्कत न।
0: खर पतवार निवारण के बाद अहाँ के जे छै जो उर्वरा शक्ति के सेहो व्यवहार करत होबै, तऽ अहाँ उर्वरा शक्ति जो दै छियै खाद वगैरह दै छियै, तऽ कोन कोन खाद के अहाँ व्यवहार करै छियै?
1: देखियौ, उर्वरा शक्ति में तऽ अपन एगो कम्पोस्ट छै अपन देसी, वो व्यवहार करै छी, और जाय छी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के वहाँ से खाद उद ले लै छै, लेकिन तो यूज नहीं करे के चाहिए रसायन खाद, लेकिन कुछ मायने में आप कनी मनी छिड़काव कर दे छै तो कुछ राहत होइ।
0: तो अहाँ जो छै बेसी से बेसी कोन खाद के व्यवहार करै छियै, जैविक खाद के व्यवहार करै छियै या रासायनिक खाद के व्यवहार करै छियै?
1: जैविक कम्पोस्ट के हम व्यवहार करै छी और नीक ढंग से खेत करै छी, कोई तरह के दिक्कत नहीं होइ छै हमर खेती में।
0: नीक गप कहलिए कि जैविक खाद के व्यवहार कैला से एकर जो छै मानव स्वास्थ्य जे शुद्ध बना के रखत अछि आ मानव जीवन पर एकर जे छै सेहो नीक प्रभाव पड़ै छै, तऽ एहि लेल अहाँ जे छै आन किसान लोकन के की कहबनि जैविक खाद के बारे में?
1: जैविक खाद अहाँ के पौष्टिक चीज, अहाँ के जो भी दाना जो भी फल फसल के उपजा होइ छै जैविक खाद से एकदम स्वास्थ्य के लिए एकदम बेहतर होइ छै। रसायन के जितना प्रयोग करबै वो उतना शरीर के स्वास्थ्य के लिए दाना खराब, और जैविक खाद के जो भी दाना जो होइ छै फसल होइ छै ओकर बनावट और रासायनिक खाद के तरफ से जो होइ छै खेती ओकर बनावट में बहुत अंतर होइ छै, अहाँ गौर से देखबै दुनू के अनाज।
0: बहुत नीक गप कहलिए कि जे है जैविक खाद के जे व्यवहार कैला से मानव स्वास्थ्य के लेल नीक होइ छै। भोला जी, अहाँ खेती गृहस्थी विषय पर गप सब कह के बहुत नीक लागल, आशा करै छियनि कि जे आन किसान श्रोता लोकन के सेहो नीक लागल, एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, किसान श्रोता लोकनि अखन भेंटवार्ता सुन रहल छलहुँ। भेंटवार्ता के विषय छल कदवा विधि से धान के खेती। भेंटवार्ताकार छला भोला यादव, हिनका से गप कर रहल छला देवनानी यादव। आब जो छै कार्यक्रम के फेनु आगू बढ़ाबी, और देख रहल छी जे अखन जे मौसम जे ओना तऽ हमर किसान श्रोता लोकनि पानि के ताक में लागल छथि, मुदा बरखा भऽ नहि रहल अछि। कवितो अछि, का बरखा जब कृषि सुखानी, जब वक्त पर जब ताक पर बरखे नहि भऽ रहल अछि, आ जब बिया बाल जखन सुखिए जायत खत्मे भऽ जायत, ओहन पानि फेन बादमे जखन बरखा होयत तऽ एहन पानि कोन काम के। तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनि के जो छै समसामयिक खेतीबाड़ी पर सेहो ध्यान रखबाक चाही। समसामयिक खेतीबाड़ी में राहर उड़द में निकौनी कमौनी कऽ सितंबर वाला राहर लेल खेतक तैयारी करबाक चाही। संग संग मौसम के अनुकूल माह के अंत धरि बुआई सेहो करी। मूंगफली में कमठान कऽ माटि चढ़ा देबाक चाही, नमी के देखत आवश्यकता अनुसार पटौनी सेहो करबाक चाही। संग संग कीट व्याधि से बचाव लेल उपचार वैज्ञानिक सलाह से सेहो करबाक चाही। कुसियार पर माटि चढ़ेबाक चाही आ हरियर पात के एक दोसर से नहीं बंधबाक चाही। शकरकंद जकरा गाम घर में अल्हुआ सेहो कहल जाइत अछि, ओकरा लेल समयक अनुकूल खेत के तैयारी सेहो करी। किसान श्रोता लोकन एकरे संग समसामयिक कृषि कार्य सम्पन्न भऽ रहल अछि। आब देखू जे हमरा लोकनि समय में बांधल छी, एकरे संग खेती गृहस्थिक समय सेहो सम्पन्न भऽ रहल अछि। तऽ आब किसान श्रोता लोकनि से चले के आज्ञा ली। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों पर आधारित कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, हाँ यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंग का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुर्रद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222281। हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। अब हमारा अगला कार्यक्रम
1: ग्रामीण आकाशवाणी चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
7: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
9: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: और इस गीत के बाद
12: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों के तबादले की नीति को लचीला बनाया जा रहा है। शिक्षक अब तबादले के लिए 30 विद्यालयों का संकल्प दे सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि अब तक 23 किस्तों में 44,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा चुकी है।
1: बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है, खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। हंगामे के कारण सदन में बिना किसी चर्चा के यह विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ उनके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों का सम्मान करती है, लेकिन अगर आंदोलन में अपराधी भी शामिल हो जाए तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है।
3: ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला

0: हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप, और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो गंभीर सवाल तो ही है।
1: विपक्ष ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज प्रभावित हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही 3 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी पसंद के कम से कम एक और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक तबादले के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारने वाले एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी को सबसे पहले अक्षय कुमार ने गोली मारी थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि बिहार से राजद का वजूद खत्म होने वाला है। श्री आलोक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी।
2: बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका नाम तो वैसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन न प्रशांत है न किशोर है, वो है प्रखर कुटिल। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया।
1: राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में पार्टी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को सभी वर्गों का सहयोग मिला है।
3: इस बार बीजेपी की करारी हार होने जा रही है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल हम लोग चुनाव, हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी जो है, जिनको समाज का हर जाति हर धर्म के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों की बड़ी जीत जो है बांकीपुर से होने जा रही है। और 3 तारीख को नतीजा आएगा, उसमें आप सब लोग देखिएगा कि जो है लालटेन खिलेगा।
1: निगरानी विभाग की टीम ने औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा उमेश कुमार ने मारपीट के मामले में नामजद आरोपी का नाम केस डायरी से हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna cbs@gmail.com।

0: com.
1: Shubh Vani.
0: Labhavani.
1: Akashvani. समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की समृद्धि अब वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि कनाडा को बिहार से 7 मीट्रिक टन मखाना भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने सिपाही और ASI रैंक के पुलिसकर्मियों को वाहन जांच करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय वाहन जांच के दौरान आ रही विभिन्न

0: अता हसनैन ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। राज्य सरकार ने सिपाही और एएसआई रैंक के पुलिसकर्मियों को वाहन जांच करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय वाहन जांच के दौरान आ रही विभिन्न शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने आज पटना में बताया कि इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए जांच दल भी बनाए जाएंगे।
1: स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो उसको ये काम नहीं करना है।
0: विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री कुमार वर्ष 2021 में विधान पार्षद बने थे। समझा जाता है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने विधान पार्षद की सदस्यता छोड़ी है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले के कुछ भागों में रात 8 बजे तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। सुपौल जिले के किशनपुर अंचल के मौजहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित पचगछिया गांव में कोसी नदी के कटाव से लोगों के सामने पलायन का खतरा मंडरा रहा है। कटाव से सरकारी नल जल योजना के तहत निर्मित पानी टंकी ध्वस्त हो गई है। किशनपुर के प्रभारी अंचलाधिकारी जिया उल कमर ने बताया कि अब तक कटाव की चपेट में आकर 15 घर नदी में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है। नेपाल के सुनसरी में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धनुषा और सिराहा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के कारण जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पटना में क्लस्टर शिविर का आयोजन किया गया। एनएसओ के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को वेब पोर्टल पर रिटर्न खुद भरने की जानकारी देना था। रक्षा विभाग की ओर से छपरा में पूर्व सैनिकों के लिए रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सारण प्रमंडल के तीनों जिलों के लगभग 1000 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के शिवचक बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की है। जब्त दवाओं की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। मधुबनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त की है। जुलाई महीने में कार्रवाई के दौरान 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बांका जिले के बौंसी प्रखंड के तिवारीचक गांव में पटवन के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक महिला की बाघ के हमले में मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों के तबादले की नीति को लचीला बनाया जा रहा है। शिक्षक अब तबादले के लिए 30 विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।

0: आशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
1: सावन का पावन महीना शुरू होते ही कैमूर जिले में भक्ति का माहौल है। सभी शिवालयों को सजाया गया है और श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुटे हैं। जिले के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। धार्मिक न्यास समिति की ओर से मंदिर के गर्भगृह में स्थित चतुर्मुख मंगलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर मेले की शुभारम्भ किया गया। कंवरिया बाबा का जलाभिषेक करने के साथ मां मुंडेश्वरी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने धाम में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धाम परिसर में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों और पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रकाश, पहुंच मार्ग, वाहन पार्किंग, विश्राम और आवासन की समुचित व्यवस्था की गई है। इधर जिले में धान की रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। नहरी क्षेत्र के किसान नहर के पानी से, जब असिंचित क्षेत्रों के किसान समर सेवल डीजल पंप और मोटर के जरिए खेतों की सिंचाई कर धान की रोपनी कर रहे हैं। जिले में इस बार 1,41,000 हेक्टेयर में भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 65% क्षेत्र में रोपनी हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि खरीफ फसलों की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई है। समितियों के अधिकारी उर्वरक दुकानों का निरीक्षण कर आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की जांच कर रहे हैं। कैमूर के मोहनिया और भभुआ शहर में पाइपलाइन के जरिए घरों तक पीएनजी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी घनानंद ने बताया कि पहले चरण में सितंबर तक मोहनिया शहर के सभी घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके बाद दूसरे चरण में भभुआ शहर में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी।
2: अभी वर्तमान में कैमूर जिला अंतर्गत पाइपलाइन नेचुरल गैस का काम तेजी से चल रहा है और ये लक्ष्य जो हमारे पूरे जिले का है कि मोहनिया में सितंबर माह के अंत तक एवं उसके अगले आगामी अक्टूबर माह तक भभुआ शहर में भी हम पाइप नेचुरल गैस जो है प्रत्येक घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आदमियों को गैस सिलेंडर प्रत्येक महीना उसका बुकिंग या उसको लाना या ढोने का के समस्या से निजात पा जाएंगे। और पाइपलाइन नेचुरल गैस जो है कि एलपीजी के कंपैरिजन सस्ता भी है और सेफ भी है।
1: जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों से बैंक खातों को आधार से सीडिंग कराने और जीवन प्रमाणीकरण जल्द कराने की अपील की गई है। विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,99,829 लाभुकों को हर महीने 1,100 रुपए पेंशन मिल रही है। इनमें 23,146 लाभुकों ने अब तक अपना बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं कराया है। प्रशासन

0: ने समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि पेंशन की राशि मिलने में परेशानी नहीं हो सके। सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूरे होने पर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने दर्जन भर लाभुकों के बीच भूमि बंदोबस्ती के पर्चे वितरण किए। कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और लाभुकों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। सात निश्चय योजना के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले सप्ताह कैमूर जिले के राजकीय डिग्री महाविद्यालय चैनपुर और राजकीय डिग्री महाविद्यालय नुआ में शैक्षणिक सत्र का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि इन महाविद्यालयों की शुरुआत जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में कैमूर के कलेक्ट्रेट में सांसद मनोज कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक हुई। सांसद ने विकास योजनाओं को समय पर लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के अस्पतालों में सर्पदंश की वैक्सीन और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों को निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन देने को कहा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मां मुंडेश्वरी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने टीबी मरीजों के बीच पोषण किट वितरण किए। उन्होंने कहा कि पोषण किट वितरण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक सहभागिता के साथ स्वस्थ समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण संकल्प है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से भभुआ मंडल कारा में बंदियों के लिए जागृति योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, प्ली बार्गेनिंग और अपराधों के समन से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ख़ानदान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ थी, नक्श लायलपुरी के बोल और नक्श लायलपुरी के संगीत और खय्याम के बोल।

क्षमा करें, नक्स लैलपुरी के बोल और खयाम के संगीत हैं। तो आइए सुनते हैं अब अगला गीत। फिल्म है ये समा समा है सुहाना, जब जब फूल खिले फिल्म, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के गीत और कल्याण जी आनंद जी के संगीत।

0: अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया कुछ कल उस पर प्रतीक्षा कीजिए और सुनते रहिए ये फिल्म संगीत।
1: का अरोड़ा से आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले

लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी, आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का

समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति किया गया था। मंत्री अमित

ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित

0: उपयोग से संबद्ध था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटे के मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंक में। एहिठाम हम सब साहित्यिक गपशप तो करते छी, संगहि संग सामाजिक सरोकार सँ जुड़ल गप सेहो करैत छी। तकर कारण अछि जे साहित्यक जे सृजन होइत अछि ओकर मूल मे तो समाजे निहित रहैत अछि। समाज में घटि रहल घटना नीक होइ कि बेजाय होइ, वह आधार बनैत अछि साहित्यिक निर्माणक लेल, जाहिसँ आमजन जे होइत छथि से ओहि साहित्यिक माध्यमसँ अवगत होइत छथि। ततबे नहि, साहित्य आमजनके एकटा प्रशस्त बाट सेहो देखबैत अछि, जाहिपर चललासँ सम्पूर्ण सामाजिक अपन कर्तव्यक बोध होइत छैक। असलमे कोनो जे श्रेष्ठ साहित्य होइत अछि ओ सदैव समाजक कल्याण हेतु लिखाइत रहल अछि आ आगुओ लिखल जायत। कारण साहित्य निर्माता जे होइत छथि हुनक दृष्टि बहुत व्यापक होइत छनि, ओ बहुत किछु देखै छथि अपन दिव्य दृष्टिसँ, जकरा कोनो समान व्यक्ति अपन दुनू आँखिसँ नहि देख सकैत अछि वा नहि देख पबैत अछि। तकरा साहित्यिक जे लोक छथि, साहित्य सर्जक जे होइत छथि, ओ देखैत छथि। तेने कहलो गेल अछि जे जतऽ नहि जाइत रवि ततऽ जाइत कवि। मने जतऽ धरि सूर्यक रोशनी नहि पहुँचैत अछि ततऽ कविक सोच जाइत अछि, पहुँच जाइत अछि। जेना सामान्य बातमे जँ कही तऽ कोनो मनुष्यक हृदयमे सूर्यक रोशनी तऽ नहि जाइत अछि, किन्तु ओकरा मोनके पढ़ब, कोनो व्यक्तिक मोनके पढ़ब साहित्य सर्जक लेल सामान्य बात होइत छनि। ओ ओकर मोनक बात पढ़ि लैत छथि, ओ बुझि जाइ छथि जे अमुक व्यक्तिक मोनमे की चलि रहल छै। जे व्यक्ति अज्ञानी होइत छथि, जिनका ज्ञान कम रहैत छनि, साहित्य हुनका धरि ज्ञानक ज्योत पहुँचेबाक काज करैत अछि। इएह तऽ साहित्यक मुख्य उद्देश्य होइत अछि। आ इएह सब गप करबाक लेल तऽ हम एहिठाम अहाँ सब लग अबैत छी। देखियौ जे हम तऽ एतऽ बैसते देरी अहाँ सब लगमे बतिया लगलहुँ, अहाँ सबसँ करऽ लगलहुँ गप अपन साहित्यक। आ इएह तऽ अछि जे हमरा बिसरा जाइत अछि जे हमरा एहिठाम अयलाक बाद ई जे अपन कार्यक्रम अछि तकर रूपरेखा सेहो पहिने अपने सबके एक बेर कहि दी। ओना तऽ बुझले रहैत अछि, तथापि हमर तऽ काज बनैत अछि ने जे एक बेर फेर अपने सबके बुझा दी। तऽ हमसब अहिना गपशप जेना करै छी से तऽ करबे करब। संगहि संग कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद सेहो लेब। जँ समय

भेटत तऽ काव्यपाठ सेहो सुनबे करब। आ सबसँ तऽ महत्वपूर्ण ई अछि जे सिंगरहारमे सभ दिन हमसभ किछु शब्दपर गप करैत छी, मने शब्द विमर्श करैत छी, से आइयो करब। आ ई जतेक गप करैत छी हम वा अहाँसभ जे कार्यक्रम सुनि रहल छी, सिंगरहारसँ जे अहाँसभ जुड़ि चुकल छी वा जे नहि जुड़ल छी ओहो जुड़ि सकैत छी, सुनि सकैत छी, से अपन रेडियो सेटपर तऽ अहाँसभ सुनितहि छी। सङ्गे सङ्गे हम फेरसँ मोन पाड़ि दी जे आकाशवाणीक सभटा कार्यक्रमक सङ्ग सङ्ग अपन भाषा साहित्यक कार्यक्रम सिंगरहार सेहो अहाँसभ अपन मोबाइल फोनपर सुनि सकैत छी। न्यूज ऑन AIR एपके माध्यमसँ अहाँसभ तऽ हमरा चिन्ह गेल हेबे करब अपन साहित्यिक बंधुके कोना बिसरि सकैत छी। तऽ हम फेर मोन पारी जे हम छी अहाँसभक साहित्यिक सहयात्री सोनू। बंधु लोकनि, देखियौ जखन हम एतय एलहुँ हैं आ गपशप कऽ रहल छी, आगुओ गपशप करब, बहुत रास गप करब, किएक तऽ बहुत रास मोनमे जे साहित्यिक बात रहैत अछि, सामाजिक गपशप रहैत अछि, से सेहो करबाक तऽ रहिते अहाँ सभसँ। मुदा ताहि सङ्ग एकटा बात तऽ आर छै जे खाली जे हम अहाँसँ गप्पे करैत रहब तऽ मोन से उसठि जायत अपन ई साहित्यिक कार्यक्रमसँ, से हम उष्ठा तऽ नहि देब। कारण जे हम अहाँसभ लेल गीत सङ्गीत तऽ सेहो लगबिते छी ने, से सुनेबे करब ने। मुदा पहिने किछु गप जे अछि से तऽ कहि दी। आ अहाँसभ दिस बरखा केहन होइत अछि से तऽ अहीँसभ कहब, मुदा हमरा जेना लगैत अछि जे अखाड़ तऽ सुखाड़मे बीत गेल। साउनो जेना लगैत अछि जे तेहने सनक धुरिया रहल अछि। मेघ तऽ अबैत अछि मुदा जेना केओ रुसि कऽ चल जाइत अछि, तहिना मेघ सेहो रुसि रहैत अछि। देखै छियै हैया अयलै, हैया अयलै, आ लगलै लगै जे हौए चलि गेलै। से जे होइक, मुदा ई जे समय अछि, ई जे बरखा रेतो अछि, ताहिमे जे सङ्गीत होइत अछि, एकर जे गीत अछि, से तऽ सुनबे करब ने, ओ कोना बिसरि सकैत छी। कारण जे बरखा होय कि नहि होय, गीत अपन हमरा सबके प्रिय अछि।

एखन सुषमा कुमारी सँ कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद हमसब लऽ रहल छलहुँ हैं। देखियौ, जे भले बरखा नहि पड़ैए, बुन्दिया नहि पड़ैए, किंतु छै तऽ सौने मास। एहि मासमे तऽ बुझू जे सब दिने पानि होइत छलैक। सौन मास तऽ पूर्ण रूपसँ बरखाक मास अछि ने। शुरू भऽ जाइत छै अखाड़ेसँ, लेकिन सौन अबैत अबैत तऽ समुच्चा जे नदी, नहर, नाला, खत्ता, डबरा, जत

रहित छल सबटा भरि जाइत छल। बैंक बाजब शुरू कऽ दै छलै एहि मासमे। कुम्हरोसँ मेघ अयलै आ सुपाने उझलऽ लागल। आ ई सब जखन होइत छलै, जखन खूब पानि पड़ल साओन मास, बैंक सब कौं काँ कऽ रहल अछि, तखन जे किसान लोकनि होइत छथि हुनकर करेज सूप सनक भऽ जाइत छलनि। कारण बरखा हेतैक तखने ने रोपनी हेतै, आ जखन रोपनी हेतै तखने ने कटनी हेतै, आ जँ से नहि हेतै तऽ अगहन सेहो रुसले रहतै ने, आ जँ अगहन रुसि जायत तखन गृहस्थ जे छथि तिनकर की दशा हेतनि से तऽ हमरा लोकनि अनुमान कैये सकैत छी। आह, से कै साल सेना देखबामे अबैत अछि जेना मिथिलासँ मेघ रुसि रहल अछि। अखार तऽ ओहिना तपले चल गेल, साउन सेहो जेना दग्धले अछि। ऊपर मेघ देखाइ छै कारी कारी टुकड़ीमे अबैत अछि, मुदा जेना ओ खाली रहे, बूंद पड़ैत कहाँ अछि, बरखा होइत कहाँ अछि। ओतऽ लगै छै जेना आयल मेघ आ चल गेल, जँ किन्सियत कखनो धोखाधोखी बरसियो गेल तऽ ततबे बरसैत अछि जे धरतियो पूर्णतः तृप्त नहि भऽ पबैत अछि, ओकरो मोन जेना जरले रहित छैक। साउनक सिंगार अछि हरियरी, चारुकात हरियर हरियर देखाइमे अबैत रहित अछि। गाछ वृक्ष खेत खरिहान, यह एहि मासक सौन्दर्य अछि। मुदा ई सौन्दर्य कतय चल गेल, किया एना भऽ रहल अछि, कि किन्सियत हमही सब तनि ओकर उत्तरदायी छी। जखन से अपन मोनके टटोलै छी, अपन मोनके जखन उधेसैत छी, तखन लगैए जे निश्चित रूपसँ हमही सबसे एकर उत्तरदायी सेहो छी। कारण जे हमरा लोकनि जाहि तरहें गाछ वृक्ष काटि रहल छी, जंगल साफ केने जा रहल छी, प्राकृतिक जंगल नष्ट कऽ कऽ कंक्रीटक जंगल लगेने जा रहल छी जहि तहि, तखन बरखा कोना हैत। बरखा तऽ तखन हैत ने जखन सूर्य धरती पर जे पानि अछि, पोखरि अछि, नदी नहर अछि, ओकर जे पानि तकरा अवशोषित करैत छथि आ पुनः मेघके दऽ कऽ ओकरा बरखाक रूपमे अबैत अछि। तऽ से देखियौ ने, हमसब कोना एक दिशाहन लागल छी प्रकृतिक संग अन्याय करबामे। गाछ वृक्ष कटने जा रहल छी अंधाधुंध, ततबे नहि बड़का बड़का जे पोखरि छल गाम घरमे सेहो भरा गेल, ओ पोखरि आब नहि देखाइ दैत अछि। तऽ जखन अहाँ लगने पोखरि अछि,
ने जंग

चल अछि तऽ बरखा कोना हैत, तखन ई साउन कि भादव कोना बुझायत जे साउनमे बरखा कोना पड़ैत छै। सात सात दिन, दस दस दिन धरि कोना लधने रहैत छै मेघ, कहाँ आब होइत अछि। हाँ, जँ आइयो हमरा लोकनि ओहिसँ सीख ली, आइयो जँ हमसब बुझी, तऽ एतेक बुझबामे भांगट नहि जे हमरा सबके गाछ वृक्ष लगेबाक चाही। कारण गाछ एकटा संतान जकाँ होइत अछि, ओकरा लगाओ, पोषू, ओ निश्चित संतान जकाँ अहाँक सेवा सेहो करत। देखियौ, संतान सँ मोन पड़ल, हमरा आगूमे एकटा सूचना अछि जे नवजात जे शिशु होइत छथि, नवजात जे संतान होइत अछि, तकरा लेल स्तनपान बहुत जरूरी होइत अछि। से बच्चाके लेल तऽ होइते अछि, कही जे स्तनपान मायक लेल सेहो ओतबे आवश्यक होइत अछि, फायदेमंद होइत छैक। स्तनपानके की फायदा छै, इएह अछि एहि बेरक आकाशवाणी दरभंगाक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीक अगला अंकक विषय। विषय विशेषज्ञ हेती डॉक्टर जमुरद परवीन। प्रसारणक समय अछि रवि दिन 2 अगस्त 2026 के दिन के 11 बजे सँ। एहि लेल मने एक कार्यक्रम सँ जुड़बाक लेल अहाँ सब फोन कऽ सकै छी। ताहि लेल हमर फोन नंबर अछि 9430029353। ई तऽ सूचना छलै, सम्पन्न भेल। आ अपन जे कार्यक्रम अछि ताहि पर आबी तऽ अपन कार्यक्रमक जे रूपरेखामे कहने रही जे एकटा महत्वपूर्ण रूपरेखामे हमरा सब कार्यक्रम रहैत अछि शब्द विमर्श, तऽ आओ अपन किछु शब्द पर सेहो गपशप कऽ ली। एकटा शब्द अछि झटकारब। झटकारब मने की होइत अछि? झटकारब मने होइत अछि झटकारि कऽ चलब, मने कने तेजसँ चलब, दौड़ब नहि, ने धीरे धीरे चलब, लेकिन डेग नमहर कऽ कऽ चलब, जल्दी जल्दी चलब, तकरा कहै छै झटकारि कऽ चलब, झटकारब। आ परतारब मने, परतारब मने भेल ककरो बुझायब कोनो बातक लेल। जेना कोनो बच्चा जँ रुसि रहैत अछि तऽ ओकरा हमसब परतारि कऽ मनबैत छी, ओकरा बुझेबाक प्रयास करैत छी। ओहिसँ एकटा शब्द परतारब सँ एकटा अखन मोन पड़ि रहल अछि हमरा शब्द बौसब सेहो होइत अछि, मने जे रुसि जाइत अछि तकरा बौसल जाइत अछि, मने मनायल जाइत अछि। आ सहटारब, सहटारब मने भेल कात करब, हटायब। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। देखियौ, जे गपशप तऽ बहुत भेलै, शब्द विमर्श सेहो भेल, तऽ आब समय सेहो लगीच आबि गेल अछि। तऽ कहलहुँ हेँ जे भने बरखा नहि बरखै, नहि हुए, पानि नहि पड़ै, मुदा ई जे मास अछि तकर आनन्द कोना भेटत, तऽ हमरा सबके एकर आनन्द गीतक माध्यमसँ भेटत। तऽ आओ गीतक माध्यमसँ हमसब बरखाक आनन्द ली।

0: और योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर

0: पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: newsonairvi.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of

0: उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसअत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानेब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसअत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए ताउन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा ना लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फ़े सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ़े सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तराआत का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहीमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द शिल्प, सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य। वार्ताकार होंगे शिशिर कुमार कर्ण।

0: प्रस्तुत है समन्वित रेडियो साहित्य की पत्रिका शब्द शिल्प का दरभंगा अंक। श्रोताओं नमस्कार, आज के इस अंक में आप सुनेंगे शिशिर कुमार कर्ण की वार्ता प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य। इसके बाद सुनिएगा नरेंद्र देव शुक्ल तरुण से उनकी कहानी समर्पण और कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा से काव्य पाठ। लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, बच्चे देश की आधारशिला है, इनकी समुचित शिक्षा और बौद्धिक विकास पर ही देश का विकास संभव है। इस दिशा में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा बच्चों में स्वस्थ संस्कार डाले जा सकते हैं। अनुशासन, मर्यादा और व्यवस्था की नींव बचपन में ही उचित बाल साहित्य द्वारा निर्मित की जा सकती है। श्रोताओं, आज बच्चों का जीवन मोबाइल और इंटरनेट गेम आदि की ओर ही घूमता नजर आता है। वे पत्र पत्रिकाओं किताबों से दूर होते जा रहे हैं। ये इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बाल साहित्यकारों का दायित्व बढ़ जाता है। बच्चों के बिना घर संसार देश दुनिया सोनी सोनी सी है। कहने का मतलब बच्चों से ही कल है। अतः भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण में बाल साहित्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। श्रोताओं, बाल साहित्य ही बच्चों के भविष्य का निर्माता है। इसका मूल उद्देश्य कुरीतियों तथा सभी प्रकार की बुराइयों से हटकर स्वस्थ, सुंदर और आनंदमयी जीवन जीने की कला सिखाना है, जिससे बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक हो न कि नकारात्मक। श्रोताओं, चारित्रिक दृढ़ता लाने का सर्वोत्तम माध्यम बाल साहित्य ही है। बच्चों के हृदय की कोमलता और मन की सच्चाई को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। समाज रूपी बगिया का सौंदर्य ये बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों के प्रति सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। मुस्कुराते बच्चे समृद्धशाली देश की पहचान होते हैं। बच्चे ही बड़े होकर देश के निर्माता बनते हैं। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय। शब्द शिल्प में लीजिए प्रस्तुत है शिशिर कुमार कर्ण की वार्ता प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य।
1: मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य को पूर्ववर्ती युग के तिलिस्म और अय्यारी वाली कहानियों से निकालकर यथार्थ की जमीन से अंकुरित कर उदग्र आदर्श की ओर उन्मुख करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में ही संपूर्ण हिंदी जगत को अपनी कलम से चमत्कृत और आकृष्ट करने वाले अप्रतिम साहित्यकार थे। उनका जीवन काल वर्ष 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक कुल 56 वर्षों का रहा। उनके लिखे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि व गोदान ने प्रेमचंद को हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में स्थापित किया। विदेशी भाषाओं में भी इन उपन्यासों के अतिरिक्त शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सौत, परीक्षा, उपदेश आदि कहानियों को प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। निर्धनता और गंभीर अस्वस्थता के चलते वर्ष 1936 में वह परलोक सिधार गए। अपने समृद्ध कथा साहित्य के लिए वह सदा के लिए अमर हो गए। परंतु यदि वह स्वस्थ रहते तो अपने जीवन काल में ही वह हिंदी कथा जगत की और मंजिलें गढ़ते। इसी वर्ष उन्होंने मंगलसूत्र नाम से एक और उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, जो उनके निधन के कारण पूरा नहीं हो सका। और इसी वर्ष 1936 ईस्वी में ही उनकी एक कथा रचना पूर्ण हुई थी, कुत्ते की कहानी। कुत्ते की कहानी वास्तव में हिंदी कथा जगत में बाल साहित्य की नींव रखने वाली रचना है। यह रचना हिंदी साहित्य का प्रथम बाल उपन्यास है। शीर्षक में कहानी देखकर लग सकता है कि यह कहानी प्रेमचंद द्वारा बच्चों के लिए लिखी एक कहानी है, लेकिन प्रेमचंद की यह दीर्घकाय और औपन्यासिक ताने बाने में बुनी एक ऐसी कथाकृति है जो अपनी

रचना शैली कथ्य और भाव विस्तार की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम और श्रेष्ठ बाल उपन्यास ही है। इसकी भूमिका में प्रेमचंद ने बाल पाठकों को इस प्रकार से संबोधित भी किया है, उम्मीद है तुम्हें यह कुत्ते की कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि इस कुत्ते के भीतर भी तुम्हारे जैसा ही सरल निश्चल बच्चा बैठा हुआ है। इस प्रकार बच्चों के लिए लिखी यह महत्वपूर्ण कृति, जो कालांतर में हिंदी के प्रथम बाल उपन्यास के रूप में समादृत होती है, वस्तुतः प्रेमचंद के जीवन की आखिरी रचना सिद्ध हुई। यह कृति इस बात के संकेत देती है कि प्रेमचंद और कुछ वर्ष जीवित होते तो बाल साहित्य की दुनिया इन प्रारंभिक वर्षों में ही और अधिक समृद्ध हुई होती, क्योंकि कुत्ते की कहानी जब लिखी जा रही थी तब प्रेमचंद अपनी प्रतिष्ठा और यश के शीर्ष पर थे। साथ साथ गोदान जैसे महान उपन्यास की रचना भी वह कर चुके थे। फिर उन्हें उन्हीं दिनों यह बाल उपन्यास कुत्ते की कहानी लिखने की प्रेरणा आने लगी थी। अपने चतुर्दिक फैले परिदृश्य से समाज की एक एक समस्याएं उनकी रचनाओं का केंद्रीय विषय बनती थीं। शायद इसीलिए उनकी दृष्टि समाज का भविष्य बनाने वाले बाल पाठकों पर गई और उन्होंने यह बाल उपन्यास लिखा ताकि उपन्यास के नायक इस साहसी कुत्ते की कहानी के माध्यम से बाल पाठकों के मन पर उदारता और स्वाभिमान से परिपूर्ण साहस और कर्मठता का संस्कार आरोपित किया जा सके। इसलिए प्रेमचंद अगर और जीते तो हिंदी का बाल मानस जगत उन्हीं दिनों ऐसे उनके और एक से एक बाल उपन्यासों से समृद्ध होता, काश। तो यह बाल उपन्यास कुत्ते की कहानी का नायक स्वभावतः एक कुत्ता ही है। लेखक ने उसको नाम दिया है कल्लू। कल्लू अपने जिस परिवार का हिस्सा है उसमें उसकी माँ है और भाई है। इनसे कल्लू का मिजाज थोड़ा अलग प्रकार का है। कल्लू की रोटी उसका भाई ही जबरन छीनता है तो कल्लू दुखी होकर सोचता है, हम कुत्तों में यही बुराई है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का सुख नहीं देख सकता। यह व्यंग्य बाल पाठक को छूता है, लेकिन यह व्यंग्य तो प्रौढ़ पाठकों को भी अछूता नहीं छोड़ता। खैर, धीरे धीरे यही कल्लू वास्तव में नायकीय मन मिजाज का हो जाता है। अनेक बड़े से बड़े और आश्चर्यजनक कारनामों की वजह से वह सुखचैन का जीवन जी रहा है। उसकी वीरता की कहानियां अखबार छापने लगे हैं, लोग मुहमागी कीमत में उसे खरीदना चाहते हैं, साहबों की तरह उसे मेज पर खाना मिलता है, सेवा करने और टहलाने के लिए नौकर बहाल हैं, लेकिन सच पूछो तो कल्लू को चैन नहीं है, वह सुखी नहीं है, वह भीतर भीतर अशांत रहता है, क्योंकि उसका मन पहले की भांति गलियों में घूमने और आवारागर्दी करने को करता है। उसे यह बात चालती है कि सारे सुख उसके पास हैं, लेकिन गले में गुलामी का पट्टा बंधा हुआ है, और गुलामी से बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ, मगर अब यह मान सम्मान बहुत अखरने लगा है। यह बड़प्पन किसी कैद से कम नहीं, उस आज़ादी के लिए जी तड़पता रहता है जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। जब यह उपन्यास लिखा जा रहा था तब यही आज़ादी की तड़प संपूर्ण भारतीय समाज में भी व्याप्त थी। कुत्ते की कहानी हिंदी का प्रथम बाल उपन्यास है, यह जिक्र पहले कर आए हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रेमचंद की यह एकमात्र रचना नहीं है। प्रेमचंद की ऐसी अनेक कथा रचनाएं हैं जो तदयुगीन बाल पाठकों का ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर युग के बाल मन का मर्म स्पर्श करती रही है। लेखकों की रचनाएं बदलते समय के साथ अपनी आभा और मूल्य खोने लगती हैं, लेकिन प्रेमचंद की ये कहानियाँ अवश्य कोई नित नूतन तत्व अपने में अंतर्निहित रखती हैं कि आज का बाल पाठक भी उन्हें पढ़कर भावुक हुए बिना नहीं रहता। प्रेमचंद ने एक और रचना लिखी, दुर्गादास। दुर्गादास को प्रेमचंद ने जीवनी के रूप में लिखा, लेकिन अनेक समीक्षक इसे ही हिंदी का प्रथम बाल उपन्यास घोषित करते हैं। इस कृति की शुरुआत नाटकीयता के साथ होती है। दुर्गादास की दुर्जेय छवि और उसके साहस और शौर्य की एक एक घटना उसके उदात्त चरित्र

पुत्र का बखान करती है। मुगल शासक औरंगजेब को हंसा हंसा कर चिढ़ा देने की उसकी जीवटता और अंत में इस महान योद्धा का वीरगति प्राप्त करना प्रेमचंद ने जिस मार्मिकता के साथ की है वह प्रेमचंद की औपन्यासिक कला की उदात्तता का परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। प्रेमचंद की लिखी ऐसी अनेक कहानियां हैं जो खास तौर पर बच्चों के लिए नहीं लिखी गई थीं, लेकिन इनमें जीवन और जगत का यथार्थ इतना जीवंत और सर्वस्पर्शी हो आया है कि उनकी संप्रेषणीयता उम्र के बंधन को बहा ले जाती है और आबाल वृद्ध सभी आयु के पाठक के मन में गहरे उतरती जाती है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, रामलीला, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ये सब प्रेमचंद की ऐसी कहानियां हैं जो उम्र भर पाठक को तरह तरह से लुभाती रही हैं। ईदगाह का हामिद जब अपने तमाम हम उम्र बालकों की तरह खाने पीने की कोई वस्तु नहीं खरीदता या अपने किसी बालकोचित शौक की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि मेले से लौटते हुए दादी के लिए चिमटा ले आता है

0: सकता। ये सब प्रेमचंद की ऐसी कहानियां हैं जो उम्र भर पाठक को तरह तरह से लुभाती रही हैं। ईदगाह का हामिद जब अपने तमाम हम उम्र बालकों की तरह खाने पीने की कोई वस्तु नहीं खरीदता या अपने किसी बालकोचित शौक की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि मेले से लौटते हुए दादी के लिए चिमटा ले आता है, तो केवल दादी का मन नहीं भीगता, पढ़ने वाला चाहे किसी उम्र का पाठक हो भावुक होता है। हामिद का यही अंतर्वर्ती चरित्र बाल पाठकों के मन पर अद्भुत रागात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे ही दो बैलों की कथा बेजोड़ कथा है जो बच्चों को चकित विस्मित करने में सर्वथा समर्थ है। बड़े भाई साहब, कजाकी, नादान दोस्त, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बच्चे पाठ्यक्रमों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाल पाठकों के बीच इन जैसी प्रेमचंद की अनेक कहानियों का एक अच्छा व गहरा संबंध कायम हुआ है। विशेष रूप से बाल पाठकों का ध्यान रखकर प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखीं उन पर हिंदी जगत का ध्यान देर से गया है। जंगल की कहानियाँ, इसमें दर्जन भर कहानियाँ हैं जिनमें प्रेमचंद बाघ, भालू, वन मानुष, चीता आदि जंगली जानवरों के जीवन क्रम को लेकर बच्चों की दृष्टि से बड़ी संवेदना जगाने वाली कोमल शब्दावली की मार्मिक कहानियाँ कहते नजर आते हैं। तब तक प्रेमचंद अपने यश और उपलब्धियों के उस शीर्ष पर पहुंच चुके थे जिसकी चकाचौंध में उनके ही इस बाल साहित्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं के बराबर गया। कम लोग जानते होंगे कि हिंदी में रामकथा पर पहली गद्य जीवनी प्रेमचंद ने लिखी है। यह प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखी और फिर उसका हिंदी में लिप्यंतरण और अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। बड़ी आत्मीयता से प्रेमचंद ने यह स्थापित करने की चेष्टा की कि राम अपने किन उदात्त गुणों के कारण लोक में आदर के पात्र बने हुए हैं। संयोग की बात है कि बड़े पाठकों को केंद्र में रखकर लिखी यह जीवनी भी बच्चों को अधिक आकर्षित और प्रभावित करती है। बच्चों के लिए लिखी प्रेमचंद की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है कलम, तलवार और त्याग, जिसकी चर्चा के बिना प्रेमचंद का बाल साहित्य का विषय पूरा नहीं होता। अनेक लेखकों, कलाकारों, स्वाधीनता सेनानियों, पत्रकारों और अन्य ऐतिहासिक चरित्रों की जीवनी इस पुस्तक में सहज सरल बालोपयोगी भाषा में संग्रहित है। महाराणा प्रताप, राजा रणजीत सिंह, स्वामी विवेकानंद, अकबर महान, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, गोपाल कृष्ण गोखले, गैरी वाल्डी, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, डॉक्टर सर रामकृष्ण भंडारकर, श्री बदरुद्दीन तैयब जी आदि के जीवन चरित सहज सरल भाषा में प्रेमचंद ने लिखे, जो बच्चों में सेवा, त्याग और उत्साह के मूल्य अंकुरित करने वाले हैं। कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक तरफ प्रौढ़ों के साहित्य के शीर्षस्थ और सर्वप्रिय लेखक हैं, दूसरी तरफ वह बच्चों के भी महानतम कालजयी लेखक हैं। प्रेमचंद के बाल साहित्य की ओर साहित्यालोचकों को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है, जो उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का एक नूतन वात्सल्यपूर्ण स्वरूप हिंदी जगत के समक्ष उपस्थित कर सके। यह प्रसन्नता की बात है कि इस तथ्य की ओर प्रकाशकों ने ध्यान दिया है और प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित होकर सामने आने लगा है।
1: प्रेमचंद लिखित बाल साहित्य, अभी आपने शशर कुमार कर्ण की ये वार्ता सुनी। कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है नरेंद्र देव शुक्ल तरुण से उनकी कहानी समर्पण।
2: इतनी लंबी अवधि के बाद तुम्हारे पत्र का आना एक सुखद आश्चर्य ही तो है। जीवन के कितने अध्याय बीत गए, कितना कुछ घटित हुआ कि क्या कहूँ, लेकिन तुम्हारी याद और तुम्हारी तलाश कभी समाप्त नहीं हुई। अब इस लिफाफे को खोलते हुए मन इतना आशंकित क्यों है? मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। इतना कहते हुए अजय ने वह पत्र मेरे हाथों में देते हुए कहा, तुम ही पढ़ो रत्नधर, मैं आंखें मूंद कर शांत भाव से सिर्फ सुनना चाहता हूँ। अजय और मेरी बचपन की दोस्ती है, हम दोनों के बीच कुछ भी गोपनीय नहीं। यही कारण था कि पत्र

को पढ़ने का अधिकार उसने मुझे दिया ताकि पूरे ध्यान से वो सिर्फ सुन सके। मैं तो स्वयं अवाक था ये सोचकर कि आखिर इस पत्र की आत्मा क्या होगी। कुछ भी पूर्वानुमान लगा पाना कठिन हो रहा था। वैसे ये तो मैं जानता ही था कि अजय और शुभांगी में कितनी अंतरंगता थी, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मौन विद्रोह का सहारा ले शुभांगी कहीं चली गई। कुछ पता नहीं चला, कितनी तलाश की गई लेकिन सब व्यर्थ। अजय तो मौन हो गया लेकिन शुभांगी की याद उसके मन मस्तिष्क में अधिक से अधिक गहराती गई। एक रोबीले सरपंच की बेटी होने के कारण शुभांगी ने विद्रोह का साहस तो दिखा दिया और अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सरपंच ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। फिर तो कभी सूचना मिलती कि शुभांगी अपनी नानी के पास गई है, तो कभी पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई में रहने वाले अपने चाचा के यहाँ गई है। एवं प्रकारेण समय बीतता गया और लोगों के बीच उनकी चर्चा भी थमती गई। लेकिन अजय की सूनी आंखों में अब भी तलाश जारी थी और अपने स्तर से उसका प्रयास भी लगातार जारी था। सच्चाई से सभी अनभिज्ञ थे। इधर अजय मौन रहते हुए सभी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं और बंधनों को स्वीकार करता गया ताकि शुभांगी के परिवार की मर्यादा पर किसी भी प्रकार का आघात न लगे और सरपंच की दबंगई से उसका स्वयं का परिवार भी बचा रहे। उसके पारिवारिक संस्कारों में मर्यादा का महात्म्य था। फिर माँ बाप की सूनी आंखों को नहीं देख पाने की लाचारी के भी कारण उसने शादी की और फिर तो रोटी के लिए नौकरी तो करनी ही थी। खैर, अब तो यह सब कुछ हो चुका था और कहानी भी खत्म हो चुकी थी। पत्नी एक गंभीर बीमारी में असमय ही चली गई, एक छोटे से बेटे को छोड़कर जिसे अजय ने ऊंची शिक्षा दिलवाई और अब तो वो विदेश में है। अजय अपने गांव के उसी पुराने मकान में है, अकेला, शुभांगी की यादों के साथ। इस चिट्ठी को पाकर अजय की आंखों में जो चमक मैंने देखी थी वो अद्भुत थी। शुभांगी के जाने के बाद आज पहली बार उसका खिला हुआ चेहरा मैंने देखा था, जो झुर्रियों से झांकता हुआ भी कमाल का लग रहा था। वरना उसे तो हमेशा चुप और उदास ही देखता रहा था मैं। मैंने चिट्ठी पढ़कर सुनाना शुरू किया। संबोधन में कुछ भी नहीं था, संभवतः स्वीकृति की प्रतीक्षा उसे अभी भी थी। मैं जहां कहीं भी रहा तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रही, तुम्हारे हर पल की जानकारी मैं लेती रही चुपचाप। तुम्हारे मन की शांत झील को अपनी यादों से उद्वेलित नहीं करना चाहती थी। सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाने की स्थिति में मेरे पास विकल्प ही क्या था। जन्म से ही दलित तो थी ही मैं, अतः अपने आंतरिक विद्रोह को रचनात्मक दिशा देते हुए मैंने दीनहीन, वंचित, उपेक्षित और तिरस्कृत महिलाओं की दशा सुधारने और उसे एक नई दिशा देने में अपने को इस कदर झोंक दिया कि फिर अपनी सुधि ही नहीं रही। तुम पर कोई लांछन नहीं लगने देना चाहती थी, पर अब मैं थक चुकी हूँ, अतः सारी यात्राओं को विराम देकर तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा से लौटे यात्री की तृप्त और सुखद थकान का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन सामाजिकता की कोई भी बेड़ी हमारे लिए बंधन नहीं बन सकती। परंपराओं की छाया से निकलकर देखो, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हम दोनों अगर देखें और महसूस करें तो शायद हम दोनों की आंखों की गहराई बुढ़ापे से और ज्यादा गहरी हो गई हैं। जीवन तो एक नदी है अजय, जिसका लक्ष्य है चिर शांति की आस लिए सागर तक की यात्रा। अतः इस अवस्था में कोई भी सामाजिकता हमारे पथ में बाधा नहीं बनेगी। और फिर तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल देने की चिंता से मुक्त हो जाएगा। अजय, हम लोगों की उम्र के लोग इतने भारी क्यों हो गए हैं कि आज की युवा पीढ़ी उन्हें वृद्धाश्रम में डालकर भार मुक्त हो जाना चाहती है? तुम्हारे चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में छिपी पीड़ा मैं सहज ही अनुभव करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। मेरे जीवन में तो इतना बिखराव रहा, ओढ़ी हुई इतनी व्यस्तताएं रहीं कि अपने विषय में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। आज

0: जीवन के बीते कालखंड चलचित्र की तरह आंखों के सामने से तेजी से गुजर जाते हैं और यह सब मैं आंखें मूंद कर ही महसूस कर सकती हूँ। तुम आखिर करते भी क्या? तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज अपने घावों को सहलाने का एक अवसर मुझे दे दो मेरे देवता, इसमें मेरी पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी असमय ही चली गई, बहुत दिनों बाद मालूम हुआ, बहुत कम दिनों का साथ रहा तुम्हारा। मेरा मन तो अवसाद से भर गया था, लेकिन करती भी क्या? एक अच्छे और सच्चे मित्र की तरह जीवन की इन सांधे वेला में हमारे इस निर्णय को स्वीकारने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वैसे तो अपने बीते जमाने की यादों को कुतर कुतर कर खाने और बिसूरते रहने से बेहतर है कि हम दोनों ही एक दूसरे की आंखों की झील की गहराई में डूबे रहने की सुखद अनुभूति लेते रहें। जीवन का संभवतः यही कालखंड अपना होगा जिसे स्वीकारने में हमें किसी सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम समझ पा रहे हो ना अजय, मैं हूँ तुम्हारी शुभांगी, शीघ्र आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये पत्र समाप्त होने पर मैंने देखा अजय की आंखों में एक अलग सी चमक थी। आकाश की ओर देखता हुआ वो भावी जीवन की सुखद कल्पना में खो गया था। मैंने उससे कहा, प्यार की छांव में ये विश्राम का पल है अजय, इसे महसूस करो, इसका आलिंगन करो।
1: अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र देव शुक्ल तरुण से उनकी कहानी समर्पण। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा से काव्य पाठ।
2: एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा, पास का खुद को न फिर मैं हो गया वैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा, पास का खुद को न फिर मैं हो गया वैसा। छंद यह मधुबंध का मुझ में रचा तुमने, छंद यह मधुबंध का मुझ में रचा तुमने। मन को गम गम कमल वन सा कर दिया तुमने, ठूठ में फिर हो हरा मधुमास बन झूमा। ठूठ में फिर हो हरा मधुमास बन झूमा, तुमने सुरभित श्लोक सा मुझको रचा ऐसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा। एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं, एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं। एक मचलन की अबोली सौ व्यथाएं थीं, एक भ्रू संकेत में सौ सौ कथाएं थीं। एक मचलन की अबोली सौ व्यथाएं थीं। मौन ही में खुल गया जब भेद वह न्यारा, मौन ही में खुल गया जब भेद वह न्यारा। शांत सुस्मित हुआ मैं निरभ्र नव जैसा, शांत सुस्मित हुआ मैं निरभ्र नव जैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया वैसा। एक दूरागत बंसी धुन में तुम बोले, एक दूरागत बंसी धुन में तुम बोले। एक पल ही मीत मेरे पास तुम ठहरे, पर हुआ उस पल का ही विस्तार कुछ ऐसा। पर हुआ उस पल का ही विस्तार कुछ ऐसा, जिसके परे ना रहा कुछ संसार के जैसा। जिसके परे ना रहा कुछ संसार के जैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा। एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन, एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन। एक स्वन में संपुटित संपूर्ण स्वर कानन, एक पल की छुअन में सौ कल्प की सिहरन। एक स्वन में संपुटित संपूर्ण स्वर कानन, छू दिया तुमने मुझे मैं हो गया ऐसा। छू दिया तुमने मुझे मैं हो गया ऐसा। राम जाने तुमने मुझको कर दिया कैसा, राम जाने तुमने मुझको कर दिया कैसा। एक पल मुझ में कहीं कुछ भो गया ऐसा। छू मेरे सन्यास को ऋतुराज कर डाला, छू मेरे सन्यास

0: को ऋतुराज कर डाला, हर उदासी को नशीली प्यास कर डाला। छू मेरे सन्यास को ऋतुराज कर डाला, हर उदासी को नशीली प्यास कर डाला। मुझ में जगा उन्माद पर विश्वास कुछ ऐसा, मुझ में जगा उन्माद पर विश्वास कुछ ऐसा, कि तेरा होकर हो गया खुद को अजाना सा, कि तेरा होकर हो गया खुद को अजाना सा, एक पल मुझ में कहीं कुछ बो गया ऐसा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा से काव्य पाठ। इसी के साथ समन्वित रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का दरभंगा अंक अब समाप्त होते ही। सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे समन्वित साहित्यिक की कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा के प्रस्तुति शब्द शिल्प। सूत्रधार थे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा का था। और श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए ज़रूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, हाँ यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुर्रद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272222481। हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल हमालू मां।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: लीजिए, अब प्रस्तुत है मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम रफ़ी की यादें।
1: बाल

दिलकश सुरीली आवाज है मोहम्मद रफी की। रूह से निकलकर सुनने वालों की रूह में उतर जाने वाली इस आवाज को गोल्डन वॉइस कहा गया।

0: अगर सिने संगीत की गायकी के हर अंदाज के सबसे बड़े कलाकार को याद करें तो सिर्फ और सिर्फ याद आते हैं आवाज के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के कोटला सुल्तान में जन्मे मोहम्मद रफी बचपन में ही लाहौर आ गए। बड़े भाई की हजामत की दुकान में हाथ बटाने लगे, लेकिन गाते हुए फकीर की आवाज उन्हें खींच लेती। अंदर का कुदरती गायक उभरने लगा। 13 साल की उम्र में बिजली चले जाने से KL सहगल के खाली मंच से जो रफी ने तान छेड़ी, तो ये आवाज ऑल इंडिया रेडियो होते हुए बॉम्बे और फिर पूरी दुनिया में इस तरह छा गई कि उसकी तासीर आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। मोहम्मद रफी की गायन शैली की बारीकियों का जिक्र करते हुए लोक संगीत से लेकर शास्त्रीय संगीत तक में अपनी खास पकड़ रखने वाले जाने माने गायक कुंज बिहारी मिश्र कहते हैं,
1: आज रफी साहब बहुत याद किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना। एक कलाकार के नाते मैं अपनी भावांजलि रखता हूं कि भारतीय फिल्म के पार्श्व गायकी की दुनिया में रफी साहब सदा जीवित रहेंगे। उन्होंने गायकी के हरेक आयाम को बखूबी निभाया अपने गायन में। उपयुक्त भाव, उच्चारण, तान, कण, खटका, मूर्छना, आलाप, मुर्कियों का सधा हुआ प्रयोग कर गीतों के साथ उन्होंने न्याय किया, जिसके कारण बेहतरीन गायकों में श्रेष्ठतम स्थान पाकर आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। कौन ऐसे कलाकार हैं या श्रोता हैं जो रफी साहब के गीतों को नहीं सुनते। मुझे भी याद आती है, मैं भी रफी साहब के कतिपय गीतों को गाता हूं, उनके गाए हुए गीतों को एक लाइन गाता हूं।

0: मैथिली गीतों के मुकेश के नाम से मशहूर अरविंद कुमार झा मोहम्मद रफी के गाए एक मैथिली गीत को खास तौर से याद करते हैं।
1: मोहम्मद रफी साहब एक अच्छे संगीत साधक, सरल, सहज, दयालु, निर्लोभी, आशिकी, भक्ति एवं देशभक्ति भावनाओं से सिंचित, सच्चे प्रेम की एहसास दिलाने वाली एक आवाज की पहचान है, जिनकी गायकी को सुनने से हर मनोभाव, हर दिल अपने को जवान महसूस करता है। रफी साहब मैथिली में कवि कोकिल विद्यापति की रचना को गाकर मिथिला मैथिली को बहुत बड़ी सौगात दिए।
2: माधव की कहब सुंदर रूपे कते

मैं ऐसे महान एवं अमर गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन एवं प्रणाम करता हूं।

0: मोहम्मद रफी के गाए गीतों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को अब तक संभाल कर रखने वाले सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त अरुण कुमार लालदास एक खास गीत के एक शब्द का जिक्र करते हैं, जिसे रियाज के दौरान मोहम्मद रफी ने 18 बार 18 ढंग से गाया था।
1: वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि शाहिर साहब ने काजल पिक्चर के लिए गाना लिखा था, ये जुल्फ अगर बिखर जाए तो अच्छा। संगीतकार रवि चाहते थे कि इस गाने के बोल में यदि एक शब्द और जुट जाए, ये जुल्फ अगर बिखर जाए तो अच्छा हो, तो गाने का कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साहिल जिद्दी थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं इसको इसमें हो शब्द नहीं जुड़ सकता। नतीजा ये हुआ कि हम लोग पेशो पेश में पड़ गए। ये गाना रफ़ी साहब को गाना था, लेकिन रफ़ी साहब ने इसका समस्या का हल निकाला और उन्होंने कहा कि इस गीत के बोलों में 18 बार अच्छा शब्द आया है और मैं इन 18 बार 18 तरह से मैं इस गीत में उस अच्छे शब्द के बोल को मैं गाऊंगा। और सचमुच में उन्होंने यह कमाल कर दिखाया। उनका यह परफॉर्मेंस एक अद्भुत परफॉर्मेंस था। आप चाहें तो इसे सुन

0: आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने छात्र जीवन से सुनते आए ललन मिश्रा बताते हैं।
1: हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायक सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब को लगभग 60 साल पहले जब मैंने रेडियो पर पहली बार सुना तो मेरे बाल मन में इस आवाज का जादू कुछ इस तरह प्रभाव डाला कि आज तक इस आवाज के सम्मोहन से मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया हूँ। गीत संगीत की हर विधा, चाहे वो प्रेमिका के हुस्न की तारीफ हो, प्रणय निवेदन हो, या दिल टूटने की पीड़ा हो, या फिर प्यार मोहब्बत से अलग मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, खुशी, गम, देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय गीत या गजल, जो भी इनकी आवाज में श्रोताओं के बीच आई वो कालजयी बनकर स्थापित हो गई, और यही खूबी इन्हें अपने समकालीन गायकों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। फिल्मी गैर फिल्मी गीतों के खजाने में अपनी मधुर और दमदार आवाज में जो गीत छोड़ गए हैं वो हमेशा उनके चाहने वालों के मन मस्तिष्क में गूंजता रहेगा।

0: मोहम्मद रफी के गाए कुछ खास गानों की धुन के बगैर बारात की रौनक आज भी पूरी नहीं होती।
1: आज हमारे तीसरा पूज चल रहा है, बैंड पार्टी हम लोग चला रहे हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। जब भी हम लोग बाजा में जाते हैं बारात लगाने के लिए तो शादी ब्याह का गाना हम लोग बजाते हैं, तभी बारात का मजा आता है। आज मेरे यार की शादी है, ये गाना हम लोग बजाते हैं। बहारो फूल बरसाओ, ये गाना बजाते हैं, तभी हम लोगों का काम संपन्न होता है। रफी साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है कि जो है सो हम लोग क्या कर सकते, जितना शुक्र अदा करें हमारे देश के लिए, उन्होंने जो दिया हम लोगों को वो हम लोग किस्मत वाले हैं कि जो पाया, जो उसके आज हम लोग धनी हैं, उन्होंने दे करके हम लोगों को गए यहाँ, जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका अल्लाह जन्नत नसीब करे।

0: गायिका पिंकी श्री मोहम्मद रफी को सभी विधा में पारंगत बताती हैं।
1: भारत में पार्श्व गायन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दर्द भरा गीत हो या कोई प्रणय गीत हो, देशभक्ति गीत हो या कोई धार्मिक गीत, गजल या फिर कव्वाली, शास्त्रीय गीत हो या कोई अन्य गीत, भारतीय पार्श्व गायकों ने अपनी आवाज का जादू हमेशा बिखेरा है और उसी में एक खास नाम है मोहम्मद रफी साहब का। मोहम्मद रफी साहब की आज पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है। आइए उनके गाए हुए चंद पंक्तियां। आदमी मुसाफिर है, आता है

0: वर्षों पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त संगीत की परख रखने वाले प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा मोहम्मद रफी को उनकी आवाज से बिंब बना देने वाला माहिर महान कलाकार मानते हैं।
1: उनकी गायकी में आत्मा की तल्लीनता थी, वे गीत को मूर्त कर देते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जब वो गाते थे, उनका कोई भी गीत लीजिए, किसी भी भाव का गीत लीजिए, किसी भी सिचुएशन का गीत लीजिए, आप उसको सुनते हुए खुद वैसी ही हरकत में उतर जाते हैं, उससे अलग नहीं रह सकते, वो आपको खींच लेता है, अपने में उतार लेता है और आप उसी अंदाज में आपकी प्रतिक्रिया प्रकट होने लग जाती है। ये जो उनकी खूबसूरती थी, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ी मीठी आवाज है, सुर और लय की गहरी पहचान है और व्याकरणिक दृष्टि से, संगीत के व्याकरण की दृष्टि से बहुत परफेक्शन है। सब कुछ होने के बाद रफ़ी साहब को सुनिए तो वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें हैं, भरपूर हैं, लेकिन मस्ती चाहिए तो मस्ती मूर्त है, उदासी चाहिए तो उदासी मूर्त है, तल्लीनता चाहिए तो तल्लीनता मूर्त है। लगता है कि जैसे उनकी आवाज़ में गाए गीत बिंबित हो जाते हैं। कविता में कहते हैं कि अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। एक खूबसूरत गायन की यह भी खूबी है कि उसे सुनते हुए हम उसे देखने भी लग जाते हैं। यह मूर्तता कोई दूसरा कलाकार

नहीं प्रदान कर सका है अपनी गायकी को। और यह रफ़ी साहब की जबरदस्त खासियत है जो औरों के यहाँ देखने को नहीं मिलती।

0: गायिका प्रियंका सिंह मानती हैं कि रफी की आवाज सभी को सुनने को विवश कर देने वाली आवाज है।
1: मोहम्मद रफी जी के बारे में क्या बोलूं? उनका गाया हुआ एक एक गीत हमें झूमने पर मजबूर कर देता है। उनके जैसा गायक ना हुआ है और ना होगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके गीतों में रफी साहब आज भी जिंदा है।
0: मोहम्मद रफी को दिलो जान से चाहने वाले रेडियो लिसनर शब्बीर आलम खुशनसीब रफी को लेकर अपनी दीवानगी को याद करते हुए कहते हैं,
2: मैं 1978 में उस वक्त का बंबई जो आज का मुंबई है इसलिए गया कि सिर्फ रफी साहब का एक बार दीदार हो जाए। उस ख्वाबों की नगरी में लोग बहुत सारी हसरत लेकर जाते हैं, मगर मेरी तमन्ना थी सिर्फ मोहम्मद रफी साहब का दीदार। मैं उनके घर का चक्कर काटता रहा, घर से बाहर आते जाते लोग और गेट बैंड से फरियाद करता रहा, मगर अफसोस उनसे मुलाकात का शर्फ मैं हासिल न कर सका, क्योंकि उस वक्त उनका विदेश का दौरा कुछ ज्यादा हुआ करता था और ये हसरत लिए मैं अपने घर वापस आ गया। और फिर कुछ सालों बाद उस अफसोसनाक खबर से दो चार हुआ कि रफी साहब का इंतकाल हो गया। ये खबर तमाम उनके चाहने वालों को गम के आंसू में डुबो दिया, मगर उनकी आवाज, उनके गाए गीत, एक दर्स, एक सबक, एक उमंग, सुकून और हौसलों से आज भी भर देता है। रफी साहब मौसीकी के पैगंबर थे। रफी साहब हिंदी फिल्मी संगीतों के तानसिंह थे। रफी साहब को भुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। रफी साहब की आवाज इन कायनात की हवाओं में मुअत्तर हैं, खुशबू के साथ सुनने वाले के कानों में शहद घोलती रहेंगी।

0: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण मोहम्मद रफी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी तो मानती ही हैं, साथ ही शास्त्रीय संगीत की उनकी बेहतरीन समझ को खास तौर से याद करती हैं।
1: अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले फकीर के गाने ने जिस शख्स को आकर्षित किया, वही शख्स आज मोहम्मद रफी बनकर, अपनी आवाज बनकर हम सबों के बीच जीवित हैं। उस्ताद अब्दुल वाहिद खान ने उनकी आवाज को अपनी तालीम देकर ऐसे तराशा मानो गीत की दुनिया के वे सरताज हो गए हों। विविध गीतों को अपनी आवाज देने वाले फनकार को मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो गीत मेरे जीवन में संगीत बनकर आया करती थी, वो गीत है

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एम निहाल मोहम्मद रफी को सर्वकालिक महा

0: महान गायक कलाकार बताते हुए उनकी आवाज को रूह में उतर जाने वाली आवाज मानते हैं।
1: ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल कर जब चट्टानों से टकराती है, बिखर जाती है, फिर नदी का रूप लेकर जिंदगी का गीत बन जाती है। दुनिया उसे मोहम्मद रफी कहती है। रूह तक उतर जाने वाली आवाज की दुनिया का वो जादूगर 1980 की 31 जुलाई को रुखसत हो गया था और छोड़ गया अपने पीछे एक ऐसा शून्य जहां केवल उसी के नगमे गूंजते हैं। कौन है वो जो दिलों को गुदगुनाने से लेकर आंसू बहाने तक, इजहार मोहब्बत से लेकर भजनों तक, ऊंची तानों से लेकर सरगोशियों तक, यहाँ तक कि मौत के 41 सालों के बाद आज तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों में इतनी शिद्दत, इतनी चाहत से सुना जाता है। रेडियो के जमाने में लोग रफी साहब की आवाज से पर्दे के हीरोज को पहचान लिया करते थे। किरदार और अंदाज का ऐसा मेल जिसका कोई सानी नहीं। इंसानी भावनाओं को शब्दों का लिबास और फिर उसकी रूहानी अदायगी किसी भी गीत को अमर बना सकती है। मोहम्मद रफी को अल्लाह ने इसी नादिर प्रतिभा से नवाजा था। सुनने वाला जैसे खुद को महसूस करने लगता था। कोई मुझसे ये पूछे कि आप मोहम्मद रफी को कैसे याद करते हैं, तो मेरा जवाब है, जिसे हम भुला ही नहीं सके उसे याद क्या करना। उन्हीं की आवाज में अमर ये पंक्तियां, श्रद्धा सुमन स्वरूप। क्यों सजाई है चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओगे मुझे। राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में, तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे। हर कदम पर है नए मोड़ का आगाज, सुनो मेरी आवाज, सुनो प्यार का राग, सुनो मैंने

0: विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका, हिंदी फिल्मों में गा चुकी पद्मश्री विदुषी शारदा सिन्हा ने मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर उन्हें कुछ इस तरह याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
1: आकाशवाणी दरभंगा के सभी श्रोताओं को शारदा सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। आज मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है और हम तो यही कहेंगे और हम यही जानते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो सदा हमारे दिलों में रहते हैं और उनकी सोच भरी वो आवाज जो हम सबों के हृदय में है वो सदा बनी रहती है। और रफी साहब का तो क्या कहना कि जिनकी हर विधा पर समान रूप से पकड़ थी, क्या शास्त्रीय, क्या भजन, क्या कव्वाली, एक से एक क्या गजल और क्या शास्त्रीय पर आधारित जो गीत थे, लोक पर आधारित जो गीत थे, बॉलीवुड में उन्होंने गाया, गैर फिल्मी गाने उन्होंने बहुत सारे गाए गजब के, और सभी एक से एक। इनके बारे में शब्दों में बयां करना तो असंभव है, पर क्योंकि मैं लोक विधा से जुड़ी हूँ और बॉलीवुड से भी जुड़ी हूँ तो आज रफी साहब द्वारा गाए भोजपुरी फिल्मों के गीतों को याद कर रही हूँ। बहुत याद आती है उनकी जो फिल्में हैं, उसमें एक फिल्म थी गोदान, और गोदान फिल्म में एक गाना था रफी साहब का, उसकी मैं पंक्ति बस बता रही हूँ कि पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो।

हाय हाय हाय क्या शब्द हैं, मुझे याद आता है बहुत ही मार्मिक गीत उनका, गंगा मैया तुहे पियरी चढ़े वो फिल्म, उसमें रफी साहब का ये गाना, आंख से आंसू निकल जाता था ये गाना सुनने के बाद, कि वो गाना है सोनवा।

एक और गाना था जो फिल्म गंगा धाम एक फिल्म आई थी, उन्होंने जो ये भजन गाया था भोला बाबा का उस फिल्म में गंगा धाम,

एक जो गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और बहुत सारे गाने मैं कितना गा के आपको सुनाऊं और कितने गीतों को मैं गिनाऊं, लेकिन एक गीत जो अभी अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी जो हमारे बहुत बड़े फनकार दिलीप कुमार साहब, जिनका अभी निधन हुआ, उनके इसमें ये गाना आया था गंगा जमुना फिल्म से, और क्या उसमें जानदार वो गीत, और उनकी दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग और रफी साहब की वो आवाज, वो मैं जरूर आपको दो पंक्ति

0: आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं रफी साहब को नमन करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि बस रफी साहब जहाँ हैं वहीं प्रभु उनको अपनी शरण में रखे हुए हैं और उनको शांति दें और उनका ये आशीष हिंदुस्तान को मिलता रहे, गायकों को मिलता रहे, कलाकारों को मिलता रहे, फनकारों को मिलता रहे, ताकि उनसे प्रेरित होकर हम कलाकार जो हैं वो कुछ आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके।
1: 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड समेत बेशुमार पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित, नेक दिल, बेहद सरल स्वभाव के महान गायक मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को जब अपनी अंतिम सांसें ली, उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों की जैसे सांसें थम गई, आसमान तक जैसे रो पड़ा, भारी बारिश में भी पूरा बॉम्बे सड़कों पर उतर आया। इस महान कलाकार मोहम्मद रफी को आकाशवाणी परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि।

0: संकलन वाचन संजय कुमार, परिकल्पना विनीत कुमार ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।
1: यादें रफी की। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुर सम्राट रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर ये विशेष कार्यक्रम सुनवाया गया।

और अभी उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए हम फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म संगीत, जिसमें हम सिर्फ रफ़ी साहब के गाए हुए गानों को ही पेश करेंगे। तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब के गाए एक फूल दो माली फिल्म का यह गीत, जिसका बोल है ये पर्दा हटा दो ज़रा मुखड़ा दिखा दो। प्रेम धवन की गीत रचना है और रवि की संगीत। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाया हुआ यह गीत।

आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आया सावन झूम के, बोल हैं ये शमा तो जली, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कितना प्यारा भाव। वास्तव में समा तो रोशनी के लिए ही जलती है, आग तो एक संयोग होता है या मानव की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण उस समा से लोग आग लगवा देते हैं, इसमें समा का क्या दोष। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मोहम्मद रफ़ी, एस बलबीर व साथी के स्वर में, कैफी आजमी के गीत, मदन मोहन का संगीत।

में समा तो रोशनी के लिए ही जलती है, आग तो एक संयोग होता है या मानव की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण उस समा से लोग आग लगवा देते हैं, इसमें समा का क्या दोष। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मोहम्मद रफ़ी, एस बलबीर व साथी के स्वर में, कैफी आजमी के गीत, मदन मोहन का संगीत।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। राजकुमार फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर के स्वर, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, हमें खेद है कि हम समयाभाव के कारण इस गीत को पूरी तरह सुनवा पाने में अक्षम हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में। तब तक के लिए सुनते रहिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूर दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that this scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen countries' energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including